मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 57 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की

0: स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अरहर की वैज्ञानिक खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: भाइयों, आज हम अरहर की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अरहर की सफल खेती के लिए बलुई दोमट व दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर खेत हल्का ढालू है तो ज़्यादा अच्छा है, इससे खेत में पानी नहीं रुकता। यदि खेत में पानी लगता है तो उसके निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। खेत का चुनाव कर लेने के बाद फिर उसकी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। जब खेत जोतने लायक हो जाए, यानी खेत में नमी उपलब्ध हो, तो एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके, 2-3 जुताइयां देसी हल से करके पाटा लगाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद कार्य शुरू होता है बुआई का।

0: बुआई कुंड में उर्वरक के बाद करनी चाहिए, ताकि कुंड में पहले उर्वरक पड़े, फिर उस पर थोड़ा मिट्टी आ जाए और फिर उस पर बीज पड़े। इस तरह की बुआई से अंकुरण के बाद पौधों की जड़ें उर्वरक के सीधे संपर्क में आ जाती हैं और पौधा अच्छी बढ़वार करता है। अब हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि उर्वरक की कितनी मात्रा प्रयोग करनी है। चूंकि अरहर एक दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ें खुद नत्रजन बना लेती हैं, इसके कारण इसे कम मात्रा में नत्रजन देना पड़ता है। हाँ, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता जरूर अधिक होती है, यानी इस फसल को कुल 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में एक हेक्टेयर खेत के लिए आवश्यकता होती है। इस मात्रा को आप डाई अमोनियम फास्फेट के द्वारा भी दे सकते हैं तथा यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा भी, किंतु अच्छा होगा कि फास्फोरस है तो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। इससे ये अतिरिक्त फायदा होगा कि वह सुपर फास्फेट के प्रयोग करने पर 12% सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है, जो कि पौधे की बढ़वार के लिए अच्छा होता है। अतः एक हेक्टेयर खेत के लिए 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय कुंड में देना चाहिए। ये तो रही उर्वरक की मात्रा, और अब बीज की बात। अरहर की दो तरह की प्रजातियां हैं, एक तो अगेती और दूसरी देर से पकने वाली प्रजातियां। अगेती प्रजातियों में टाइप 21, उपास 120, मानक और पारस प्रमुख हैं। देर से पकने वाली किस्मों में टाइप 7, टाइप 17, बहार, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय विकास और मालवीय चमत्कार, ये सब इसकी उन्नत प्रजातियां हैं। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। टाइप 21 के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस प्रजाति हेतु लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उपास 120 का प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम बीज लगता है। इसके लिए कुंड से कुंड की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नरेंद्र अरहर 1, मालवी विकास, मालवी चमत्कार जो देर से प्रजातियां हैं, इनका 25 से 30 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रहे, बोने से पहले बीज को शोधित अवश्य किया जाए। इसके लिए थियम दवा लेते हैं। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। थियम दवा से बीज शोधन के बाद उसे विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित अवश्य करें। कल्चर का 1 पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अरहर की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अरहर की वैज्ञानिक खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शिव आराधना से। भगवान शिव शंकर की आराधना करने से हमें सच्चा सुख मिलता है। शिव ही सत्य है, परम शक्ति है और सुंदर है और हमारी रक्षा करते हैं।

सृष्टि का सृजन पालन एवं दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा शिरावालिया की असीम कृपा जिस पर हो जाती है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए हम सभी भक्तजन श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं।

भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जिनमें कान्हा की मुरली सबसे प्रसिद्ध है और सभी सुध-बुध खोकर मुरली सुनने लग जाते हैं, और जिससे उनके मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भक्ति ही एकमात्र उपाय है शांति का।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के गायक कलाकार थे उदित नारायण, बाबला मेहता और पंडित भीमसेन जोशी। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: के अनेक रूप होते हैं। ये केवल दूसरों की उपलब्धियों को सहन कर पाने की अक्षमता के रूप में हो सकती है, या इसमें ये इच्छा भी शामिल हो सकती है कि वे उपलब्धियां हमें हासिल हों। हमें चाह हो सकती है कि हमारे पास वो हो जो किसी दूसरे के पास है, और हम यह भी चाह सकते हैं कि उससे वो वस्तु छिन जाए। इसमें प्रतिस्पर्धा का भाव भी हो सकता है, और इसमें अपने आप को परास्त के रूप में और दूसरों को विजेता के रूप में देखने की द्वैतवादी सोच भी शामिल हो सकती है। इन सभी में स्वयं के प्रति तल्लीनता का भाव अंतर्निहित है। बौद्ध धर्म में इन सभी घटकों का विश्लेषण करते हुए इन अशांतकारी मनोभावों को

0: विखंडित करके हमें इनसे मुक्त करने की उन्नत विधियां सिखाई गई हैं। हमारे अंदर जो ईर्ष्या और जलन होती है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है, और इस वजह को समझने के लिए जरूरी है कुछ देर खुद के साथ बैठना और अपने आप से इस बारे में पूछना। उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को पहचानना। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी इस भावना के बारे में पता लगे, इसको महसूस करना आवश्यक है। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए जरूरी है सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ें। अधिकतर मामलों में जलन की भावना हम तभी महसूस करते हैं जब हमारा आत्मविश्वास कम होता है और हमारे अंदर या हमारे पास किसी चीज की कमी होती है। हम जितना खुद को हारा हुआ समझते हैं, दुनिया हमें उससे कहीं ज्यादा हारा हुआ मान लेती है। इसलिए किसी दूसरे को या अपनी ही नकारात्मक भावनाओं को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। अपनी कीमत हम खुद ही बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी काबिलियत को समझकर। खुद को समझने के लिए आप अपनी शक्ति को समझें। आपके अंदर वो कौन सी खास बात है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है? आप किस चीज में दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं? ये समझकर अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा दें। ध्यान रखें कि दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है खुद पर ध्यान देना। अपनी अच्छाइयों को समझने के लिए आप हर रोज अपनी 5 अच्छी बातें नोट करें। ऐसा कुछ दिन करने के बाद आपको अपने अंदर एक अलग ही बदलाव नजर आएगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। खुद के साथ बैठिए, खुद को जानिए, पहले अपनी भावनाओं के साथ जुड़िए और फिर उनके साथ जुड़िए जिनके साथ आपका रिश्ता खराब हो रहा है। दूसरे व्यक्ति की गुणवत्ता, कौशल, योग्यता को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले जलन के भाव को ईर्ष्या कहा जाता है। मनोविज्ञानियों ने इसे क्रोध, लाचारी और घृणा, इन सभी भावनाओं का एक संयोजन माना है। यह एक मानसिक कष्ट है, इसका संबंध मानवीय मनोवृत्ति से होता है। ईर्ष्या नकारात्मक चिंतन और मानसिक रूप से कमजोर होने का सूचक है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, पर स्वयं की शांति अवश्य भंग कर लेता है। हमारे मनीषियों ने ईर्ष्या को मानसिक पटल पर फैलने वाली महामारी के समान माना है, जिसे अगर जल्दी नहीं रोका गया तो ये विनाशक सिद्ध होती है। ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त मनुष्य सदैव असंतुष्ट, तनावग्रस्त और दुखी रहता है। जब ईर्ष्या में दूसरे का अनिष्ट करने का भाव आ जाता है, तब वो हमारे मानसिक पतन का कारण बन जाती है। यह उस अग्नि की तरह होती है जिसे जंगल स्वयं उत्पन्न करता है और स्वयं इसमें जलकर भस्म हो जाता है। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से कमजोर और असहाय बना देती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के आनंद में सदैव वंचित ही रहता है। ईर्ष्यालु प्रकृति के मनुष्य के सामाजिक और पारिवारिक संबंध कभी सुदृढ़ नहीं रह सकते। ईर्ष्या चित्त की एकाग्रता को भंग कर देती है, जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन भी विकृत हो जाता है। दूसरों की समृद्धि के प्रति द्वेष का ये भाव जब मनुष्य के मन में स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य अपने स्वयं की मानसिक उन्नति के मार्ग को भी बंद कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ईर्ष्या से बचें और सकारात्मक रहें।
1: ये था आज का विचार बिंदु। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और आहार विहार। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मधु राणा।
2: मैं डॉक्टर मधु राणा आज आपसे बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के बारे में बातचीत करूंगी। यदि आपके परिवार में किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो हाथ पैर में बहुत ज्यादा जलन है, तो रात को एक मिट्टी के ग्लास में एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच सूखा खड़ा धनिया भिगा कर रख दें और इसे सुबह उठकर मसल कर हाथों से खाली पेट पी सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा और सस्ता नेचुरल कूलेंट है, जो कि

0: परिवार में कोई भी व्यक्ति ले सकता है। बच्चों और बुजुर्गों का इस समय विशेष ध्यान रखना होता है। इस मौसम में घर के बच्चों को विशेषकर और बुजुर्गों दोनों को धूप या लू से बचाव के लिए सारी विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस समय रोग की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए बच्चों को बाहर खेलने से धूप में रोकना चाहिए। इसके अलावा त्वचा, आंखें आदि को भी हम अपने इस गर्मी में बचा करके रख सकते हैं। दिन की तपिश के बाद जब रात के समय मौसम ठंडा होता है, उस समय अपने शरीर की एनर्जी को फिर से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए और भरपूर नींद लेनी चाहिए। क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में पित्त की अधिकता होती है और क्रोध से ये और भी ज्यादा बढ़ता है। मानसिक शीतलता बनाए रखना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए सुबह शाम 10 मिनट तक मौन बैठने का अभ्यास करें। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं। गुलाब की खुशबू या चंदन का टीका हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। रात का हल्का भोजन हमेशा करना चाहिए, जितना हो सके हल्का रखना चाहिए, जैसे पतली खिचड़ी, दलिया आदि। इसे सोने से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए और खाना खाने के बाद कम से कम थोड़ा टहलना चाहिए, ताकि हमें अच्छे से पाचन मिल सके। खुले आंगन या घर की छत पर या जहां हमें ठंडी ठंडी मिल सके, उन जगहों पे ही सोना चाहिए। बहुत ज्यादा बंद कमरे जहाँ की हवा का प्रवाह ना हो या कम हो, वैसी जगहों पे सोने से बचना चाहिए। सोने से पहले गाय के 1 कप गाय के गुनगुने दूध में थोड़ी सी मिश्री और इलायची मिलाकर पी सकते हैं, जो कि हमारी शरीर को शीतलता प्रदान करती है। यह आपको बहुत ही गहरी और आरामदायक नींद देगा। इस तरह से आयुर्वेद का मूल मंत्र, जिस मौसम में शरीर में जो चीज़ बढ़ रही है, जैसे गर्मी में गर्मी बढ़ रही है, तो उसे शांत करने के लिए हमें उसके विपरीत गुणों एवं चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। गर्मी का मौसम कोई सजा नहीं है, यह प्रकृति का एक सुंदर चक्र है। बीमार होने के बाद डॉक्टरों के चक्कर काटने और महंगी दवाइयों पर खर्च करने से 1000 गुना बेहतर है हम बिना किसी खर्च के आयुर्वेद के छोटे छोटे नियमों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। सुबह जल्दी उठना, घड़े का पानी पीना, छाछ का सेवन, रसोई के मसाले का सही इस्तेमाल और सूती कपड़े पहनना, ये सब बहुत ही साधारण बातें हैं जो कि हम अपने लिए एवं अपने परिवार के लिए इसका पालन कर अपने आप को 100% स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करके परिवार को तंदुरुस्त रख सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे, बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और आहार विहार। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर मधु राणा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर और साथी। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुबह 7:31 पर सुनेंगे प्रेम जैन का गिटार वादन। दिन में 12:45 पर सुनिए पंडित चित्तरंजन जोशी का गायन और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। सुबह 10 बजे और रात्रि 8:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर, दिन में 11 बजे सुनिएगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत।

रात्रि 8 बजे मनहर उदास की गाई गजलें होंगी। दिन में 1:15 बजे महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

शाम 5:15 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात। वार्ता सुनिए साइबर फ्रॉड डिजिटल युग की नई चुनौती। वार्ताकार होंगी शिवानी पांडे। यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन। रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत।

दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार हैं मीरा दास और

शाम 6:30 पर कृषि जगत में किसान भाई प्लास्टिक सर्जरी और इसकी उपयोगिता विषय पर सुनेंगे डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह की बातचीत, साथ ही होगा रेणु भारती का गाया लोकगीत। रेणु भारती के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा।

रात्रि 10 बजे परिचर्चा सुनेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान। प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र, नरेंद्र आचार्य, डॉक्टर राम सुधार सिंह और प्रोफेसर निरंजन सहाय। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 50वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: उससे अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और चकाचक है। बनारस, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। हालांकि मॉनसून इज कमिंग सून, बट फिलहाल ह्यूमिडिटी जो है वो बनी हुई है। ऐसे में पानी पीना और पानी पिलाना दोनों ही बहुत जरूरी हो जाता है और बहुत पुण्य का भी काम है, है ना? देखिए, पानी जीवन का आधार है और पानी भरने का पात्र हमारी जीवंत संस्कृति। घट, घड़ा, कलश, कुंभ, मटका, नाम जो हो, जीवनदायी जल को संजोने के साथ इन्होंने मनुष्य के मन को भी पानीदार बनाए रखा है। जब स्वागत

स्वागत और सत्कार में चाय पान इत्र पुष्प की भागीदारी नहीं थी, उसके पहले से ही द्वार पर आए अतिथि को मान देने का सबसे सरल तरल और सम्मानजनक साधन रहा है जल। ये कंठ को तृप्ति देते हुए नेह का ताना बाना बुनता है और मनुष्यता को गजन करता है। और देखिए, प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। पीने वाले को तृप्ति मिलती है और पिलाने वाले को आत्मिक संतुष्टि यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन। फिर भी बाजार ने पेयजल को बेचने की वस्तु बना दिया है। आज का समय लालच से भर गया है, इसलिए जब से ये 10-20 की पानी की बोतलें और पाउचेस बाजार में आ गए, तब से जलदान की भावना ही खत्म सी हो गई है। आज बदलाव का ये दौर इतना बदल गया है कि कस्बे के दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकानों से मटके वाला पीने का पानी का सारा प्रबंध ही समाप्त कर दिया है। ऐसे में तो महानगरों में प्याऊं एक कल्पना भर बनकर रह गया है। कुछ दशक पहले तक बस, ट्रेन या किसी भी गाड़ी से सफर कर रहे लोग थैली नुमा चीज को खिड़की से लटका देते थे। कोई भी राहगीर प्यास लगने पर पानी मांगकर उस थैली से पी लेता था। मोटे थैले से बनी इस थैली को छागल कहते थे। लेकिन कुछ लोग आज भी जलदान को अपना कर्तव्य मानते हैं। शहरों में लोगों और यहां तक कि जानवरों को भी पानी पिलाने के लिए कई जगह प्याऊ खोले गए हैं। और देखिए, अगर हम लोगों के भीतर जलदान के भाव नहीं खिलेंगे तो इस जगत में वो शांति और सुकून कहां से आएगा जो धरती माता की आंखों को शीतलता पहुंचा सके। प्याऊ हमारी संस्कृति और समाज का अभिन्न अंग रहा है, इसलिए इस गर्मी जलदान का संकल्प जरूर लीजिएगा। जल हमारी प्रकृति का सबसे सुंदर तत्व है और जगह जगह दिखाई देते प्याऊ मनुष्यता की महकती हुई प्रतीति। गुड मॉर्निंग बनारस।

हाँ जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 15 जून 2026 और दिन है आज सोमवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में। खास देखिए, गर्मी की छुट्टियों के बाद कल यानी 16 जून से परिषदीय विद्यालय खुलेंगे। पहले दिन विद्यालय आने वाले बच्चों का तिलक और आरती से स्वागत किया जाएगा। इस बार सभी विद्यालयों में किताबें समय से पहुंच गई हैं। बीएसए भूपेंद्र सिंह के अनुसार बच्चों के स्वागत की तैयारियां सोमवार तक पूरी कर ली जाएंगी। इसके अलावा विद्यालय परिसर, शौचालय, छत, बरामदे, छज्जे और रसोई घर की सफाई पूरी कर लेने को

कहा गया है। परिसर में उगी झाड़ियों को हटाने, पानी की टंकियों की सफाई करने और हैंड वॉश यूनिट, शौचालय और पेयजल के सभी नलों को क्रियाशील कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेलवे की ओर से जगह जगह ट्रैक मेंटेनेंस सहित अन्य कार्यों की वजह से कई ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जा रहा है। इस कारण ट्रेनों की लेट लतीफी से भी राहत नहीं मिल पा रही है। स्थिति यह है कि दिल्ली और मुंबई से आने वाली नियमित ट्रेनों के साथ ही स्पेशल ट्रेनें भी काफी देरी से चल रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे में इन दिनों दोहरीकरण, ट्रैक मेंटेनेंस, विद्युतीकरण सहित कई कार्य अलग अलग रूटों पर चल रहे हैं। इसके कारण कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। पिछले 3-4 दिनों से मुंबई से वाराणसी आने वाली ट्रेनें अधिक विलंब से चल रही हैं। इसके बीच दादर से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन दादर गोरखपुर स्पेशल, जिसे 14 जून की रात 9:45 पर पहुंचना था, वो 6:30 की देरी से आई। इसके अलावा महानगरी एक्सप्रेस भी रविवार को 4 घंटे की देरी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना हुई। इस वजह से बनारस आने वाले यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। इस ट्रेन के 15 जून को सुबह 8:30 तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जुलाई तक शहीद उद्यान पार्क तैयार हो जाएगा। जी हां, इस दिशा में निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। इसकी मरम्मत पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना में बच्चों के लिए आधुनिक झूले और आकर्षक फव्वारे शामिल किए गए हैं। सुबह की सैर के लिए विशेष पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। पूरे पार्क में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और बैठने की उत्तम सुविधा भी विकसित की जा रही है। ये पार्क सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मनोरंजन स्थल बनेगा। इस योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। ये लाइब्रेरी छात्रों और ज्ञान प्रेमियों के लिए एक शांत और आधुनिक वातावरण प्रदान करेगी। इसमें नवीनतम तकनीक से लैस सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये शहर में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने में सहायक होगी। पूरे परिसर में आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। ये परियोजना वाराणसी के शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग की ओर से पुलिस लाइन से संदाहा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसमें बाधक बन रहे पोलों और बिजली लाइनों को हटाया जाएगा। इस कारण आज लेढ़ूपुर उपकेंद्र के आशापुर, दौलतपुर के कुंती विहार, रमरेपुर फीडर और पांडेपुर उपकेंद्र के पहाड़िया फीडर पर शटडाउन लिया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस वजह से पहाड़िया, श्रीनगर, आशापुर, अमानपुर कॉलोनी आदि इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इधर डीपीएच के तहत भी कार्य कराया जाएगा। इसके कारण 33 केवी कैंट, डीह बाबा और टाउन 2 फीडर पर आज सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक शटडाउन रहेगा। इससे लहरतारा और ब्लॉक रोड के आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 15th of June। साल 1908 में आज ही के दिन कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन यूरोप के फुटबॉल संगठन UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1954 में हुआ था। भारत और चीन ने 2006 में पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साल 2008 में पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी थी। इसके अलावा आज के दिन प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया का जन्म ईयर 1929 में हुआ। इसके साथ ही भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर का जन्म साल 1932 में और भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का जन्म साल 1950 में हुआ। अब स्पेशल इवेंट्स की अगर बात करें तो आज 15 जून को दुनिया भर में ग्लोबल विंड डे यानी कि वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा की शक्ति, इसके उपयोग और भविष्य की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके साथ ही आज है प्रकृति फोटोग्राफी दिवस यानी कि नेचर फोटोग्राफी डे। हर साल आज ही के दिन यानी 15 जून को ये दिन मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के चमत्कारों की सराहना करने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने और कैमरे के माध्यम से पृथ्वी की सुंदरता को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री।

And now, Banaras, let's move on to your favorite segment. बात जरूरत की। देखिए, गर्मियों में पसीना, थकान और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण बताते हैं कि शरीर लगातार हीट हो रहा है। इससे बचने के लिए अक्सर लोग ऐसे डाइट ऑप्शंस तलाशते हैं जो शरीर की गर्मी को बैलेंस कर सके। इंडियन किचन में कुछ नेचुरल कूलिंग हर्ब्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इनमें पुदीना, सौंफ, धनिया शरीर का तापमान बैलेंस करने के साथ पाचन सुधारने और हाइड्रेशन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे कूलिंग हर्ब्स शरीर को कैसे फायदा पहुंचाते हैं और इन्हें डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं। देखिए, नेचुरल कूलिंग हर्ब्स वो प्लांट या हर्ब्स होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये हर्ब्स बॉडी की हीट लॉस बढ़ाते हैं, इससे बॉडी नेचुरली कूल होती है। कूलिंग हर्ब्स बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिक हीट कम करते हैं, वेसोलिडेशन में मदद करते हैं, डिटॉक्स को सपोर्ट करते हैं, अंदरूनी सूजन कम करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करते हैं। कुछ हर्ब्स जैसे पुदीना सिर्फ ठंडक महसूस कराते हैं, जबकि कुछ हर्ब्स जैसे धनिया, खस शरीर को ठंडा करने में मदद करते हैं। ये हीट लॉस बढ़ाते हैं और इससे बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। गर्मियों में असरदार कूलिंग हर्ब्स जैसे पुदीना, सौंफ, धनिया अलग अलग तरीकों से शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। कूलिंग हर्ब्स कई तरह से शरीर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि शरीर को ठंडक देते हैं, हीट स्ट्रेस कम करते हैं, पाचन सुधारते हैं, गैस अपच कम करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को एनर्जेटिक बनाते हैं। कूलिंग हर्ब्स शरीर के थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म यानी कि शरीर की अपनी तापमान संतुलित रखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। कुछ हर्ब्स के बायो एक्टिव कंपाउंड्स ब्रेन के हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पर असर डालते हैं। इससे शरीर को कूलिंग सिग्नल मिलता है और पसीना बढ़ता है। पुदीना जैसे नेचुरल हर्ब्स में मेंथॉल होता है। ये स्किन और नर्व्स के कोल्ड रिसेप्टर्स को एक्टिव करते हैं, जिससे शरीर में ठंडक बढ़ती है। ब्रेन को ठंडक का सिग्नल मिलता है, जिससे कूलिंग रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। कुछ हर्ब्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, इससे शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। कूलिंग हर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट्स का मुख्य सोर्स नहीं है, लेकिन शरीर में उनके बैलेंस और रिटेंशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इन हर्ब्स को पानी, चटनी, ड्रिंक्स और हर्बल टी के रूप में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि पुदीना, सौंफ, धनिया को पानी में भिगोकर या उबाल कर पीने से हमें कई फायदा मिलता है और ये एक तरह का हर्बल वाटर है। सौंफ का पानी, बेल का शरबत, गुलकंद, दूध या पानी में मिलाकर पीने से हाइड्रेशन और कूलिंग बनी रहती है। पुदीना, धनिया की चटनी या सलाद में आप डाल सकते हैं। हर्बल टी में आप लेमन ग्रास, तुलसी, मुलेठी की चाय बनाकर पी सकते हैं। ज्यादा गर्म नहीं, हल्की ठंडी करके पी सकते हैं। सब्जा, सौंफ या धनिया के सीड्स भिगोकर खा सकते हैं। ड्रिंक्स दूध या दही में मिलाकर इन सीड्स को खा सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स। बहुत ज्यादा मात्रा में इन चीजों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसान करती है। खाली पेट स्ट्रांग हर्ब जैसे एलोवेरा, गिलोय डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, और अगर कोई बीमारी है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। अलग अलग कूलिंग हर्ब्स अलग अलग समय पर ले सकते हैं। जैसे सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद पुदीना, सौंफ का पानी लेने से दिन भर के लिए बॉडी कूल और हाइड्रेटेड रहती है। बेल का शरबत दिन में आप ले सकते हैं और सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। शाम में आप हर्बल ड्रिंक्स या हल्की चाय लेने से दिन भर की हीट और थकान कम होती है। हल्के हर्ब्स जैसे सौंफ का पानी, धनिया का पानी, पुदीना पानी खाली पेट आप ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग हर्ब्स जैसे गिलोय या मुलेठी हमेशा खाने के बाद या सलाह लेकर ही डॉक्टर से लेना चाहिए। कूलिंग हर्ब्स के सही फायदे के लिए इन्हें सेवन संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। दिन भर में एक से दो ग्लास पीना काफी है, जैसे सौंफ या धनिया का पानी। एक दिन में एक से दो टेबलस्पून आप पुदीना या धनिया की चटनी ले सकते हैं। ज्यादा लेने से पाचन पर भी असर पड़ सकता है। सौंफ, सब्जा, धनिया के बीज ज्यादा लेने से गैस या लूज मोशन भी हो सकता है। एलोवेरा जूस, गिलोय, मुलेठी डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना चाहिए। एक साथ कई हर्ब ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। कूलिंग हर्ब्स भले ही नेचुरल हो, लेकिन हर किसी के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते और कूलिंग हर्ब्स का जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। बात जरूरत की। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्युएबल व्यूज ऑन पी

ELDAIR@gmail.com. मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से. एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी डे. बाय बाय.

0: गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:17 हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों की लिखीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।
2: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का

0: ग्रोथ इंजन बन गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
2: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
3: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ाने शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
5: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास

0: और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रेम जैन का गिटार वादन। राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित नंद

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रेम जैन का गिटार वादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित नंद किशोर मिश्रा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य

0: समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
5: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा।

0: एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है।

0: भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश। देशबंधु ने लिखा है, इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल। वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है, भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं। कहा, देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार, अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह सेवन कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की

0: के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
1: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। NTA ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को ये भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले ज़िक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खुसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदामात पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकाती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकाने पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनकी मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंगम

0: खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 0111-23-1084-1, 0111-23-7-1-7-1-1-7, 0111-23-7-1-7-1-6। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों महققین और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली, ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वजीर आजम मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जौर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने के 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंगहम में एजबेस्टन में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

मस्त झोंकों से सनसनाती पवन जीवन में रस घोलती है। जीवन संजीवनी यह प्राणवायु तन मन को सराबोर करती, कभी पूरब से तो कभी पश्चिम से बहती है। कहती है ये कायनात के जीव जंतु पक्षी पशु, आओ मेरे ताल में मेरे लय के साथ झूमो गाओ।

सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: ये हवा, ये पवन, ये प्राणवायु किसी सीमा रेखा में आबद्ध नहीं है। ये संसार की धड़कन है। यह तो पूरे वातावरण में केवल खुशी की लहर फैलाती, उमंग और तरंग लाती है, प्यार की मीठी कहानी सुनाती है।
1: पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है, तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

चुपके चुपके बिना आहट किसी के दिल में कई बातें कह जाती हैं ये पवन, सुनाती हैं अफसाने, सुनती हैं झंकार प्यार के पायल की। पंछी करलो करते हैं, वृक्ष गाते हैं, धरती हरी चुनरी ओढ़े दुल्हन बन जाती है।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है बृजेश चंद्र शर्मा का।
1: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृत पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी परियोजनाओं को स्वसमय पूरा करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित 3 तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को स्वसमय पूरा कर ले, जिससे कि आमजन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मार्क एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने पर लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया।
2: हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि हम लोग कोई कटान ना हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जुड़कर फेस कर सकते।
1: विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौध रोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ माह के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग

0: एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं कि केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी।
1: केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गयी। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलंब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत है उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग पर वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावनाओं के साथ कार्य करें जिससे कि योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावनाओं के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है। इसके लिए शिक्षक अभिभावक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक बच्चों का नामांकन प्रसिद्ध विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें।
2: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों 3 राज्यों पश्चिम बंगाल असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उत्साह उस समय और दुना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गांव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गांव निवासी कौशिक राय असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भारत के किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। NDRF के डिप्टी कमांडेंट राम भवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है एवं इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए NDRF एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
4: यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 NDRF की टीमें बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए।
3: पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ SDF की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1,00,000 के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के 2 युवा पर्वतारोही खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम फहराया है। गाजीपुर के नौली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अखथ प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को

0: प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा।
1: राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं।
0: पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बेजलपुर गांव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार गुलशन कुमार पुत्र कालिका राम निवासी बभन अरेहटा थाना करहगर जनपद रोहतास बिहार, हाल पता सिंधीताली थाना अली नगर जनपद चंदौली, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, ये 19 मई 2025 को सिंधीताली बाजार थाना अली नगर से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने सफ़ेद शर्ट काला हाफ पैंट पहना हुआ था। इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है। इनकी लंबाई 4 फीट है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना अली नगर जिला चंदौली को सूचित करें।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार साजिद मोहम्मद पिता अफसर अंसारी पता A40/53 अमरपुर मडिया मछली मंडी थाना जैतपुरा वाराणसी जिनकी उम्र 23 वर्ष है ये 20 मार्च 2026 को लापता है। इनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। लापता होने के समय इन्होंने ब्लू जीन्स पिंक कलर का टी शर्ट पहने हुए थे। इनका रंग गोरा चेहरा लंबा है इकहरा शरीर है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना जैतपुरा या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित कर सकते हैं।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उमेश सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह निवासी ताला मझवारा सुगुर्दीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, ये

19 सितंबर 2023 को सुपुर्दगीपुर ताला मझवारा से लापता हैं। इनकी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है। लापता होने के समय लाल रंग का टी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने हुए थे। इनका रंग गोरा है, एक अहरा बदन है, चेहरा लंबा है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना जलालपुर को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

0: कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदु गौड़ पुत्री शेषमन गौड़ निवासी हौरैया थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, ये 24 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे से नेवड़िया से लापता हैं। इनकी आयु 20 वर्ष है, लंबाई 5 फीट, इनका रंग गेहुआ है, एक गहरा बदन है, लंबा चेहरा है, लापता होने के समय चॉकलेटी कलर की साड़ी पहने हुई थी। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना नेवड़िया या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: राम के साथ मैं शमसुल आरफीन और मेरे साथ हैं
2: आसिफ इकबाल।
1: सलाम अर्ज है।
2: आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम उर्दू अदब की तीन अजीम शख्सियात पर मबनी है, जिसका उनवान है लफ्जों के तीन जादूगर, इब्ने इंशा, गोपी चंद नारंग और शहरयार।
1: सामिन, जून का महीना उर्दू अदब के लिए महज मौसम नहीं बल्कि यादों का एक दरीचा भी है। इस दरीचे से झांकने पर हमें एक मुसाफिर दिखाई देता है, जिसके शाने पर अल्फाज की एक पोटली दिखाई देती है। आंखों में हैरत और लबों पर मुस्कुराहट लिए हुए वो दुनिया के शहरों, गलियों और वीरानों में घूमते हुए अपने सफर को अदब की चाशनी लगाकर दुनिया के रूबरू पेश कर देता है। उस मुसाफिर को हम इब्ने इंशा कहते हैं।
2: इस दरीचे के दूसरे किनारे पर एक मुहक्किक खड़ा है, जो अल्फाज की गहराई में उतरता है और लफ्जों के मानी और उसके पस मंजर की गिराह खोलता है और उर्दू तनकीद को एक सिमत अता करता है। दुनिया उस मुहक्किक और नक्काद को गोपी चंद नारंग के नाम से जानती है।
1: इसी उर्दू अदब की नर्म जमीन पर एक और चेहरा उभरता है, जो एक शायर का चेहरा है, खामोश, संजीदा और ख्वाबों में डूबा हुआ, जिसके अशार में तन्हाई भी है, मोहब्बत भी और जमाने की बेयकीनी भी। और क्या आप जानते हैं जमाना उस मशहूर शायर को शहरयार के नाम से जानता है?
2: सबसे पहले हम बात करते हैं इब्ने इंशा की। शेर मोहम्मद खान, जिन्हें दुनिया इब्ने इंशा के नाम से जानती है, उनकी यौम पैदाइश 15 जून 1927 को फिल्लौर, पंजाब में हुई।
1: जी हाँ, जून की गर्मी और जालंधर की एक गली में पैदा होने वाला वो बच्चा जो आगे चलकर इब्ने इंशा के नाम से मशहूर होने वाला है। पैदाइश मौसम गर्मा में, लेकिन उसकी फन तहरीर आवाम के दिलों में एक अजीब ठंडक महसूस कराती है।
2: इंशा जब सफरनामे लिखते हैं तो कारी को लगता है जैसे कोई दोस्त सफर के किस्से सुना रहा हो, और जब शायरी या मिजाह लिखते हैं तो उसमें एक अलग तरह का लुत्फ होता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, उनकी मशहूर गजल के चंद अशार मुलाहिजा फरमाएं। इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, उस रोज जो उनको देखा है अब ख्वाब का आलम लगता है, उस रोज जो उनसे बात हुई वो बात भी थी अफसाना क्या, उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सके पर छू न सके, जिसे देख सके पर छू न सके,

0: हिजरत के कर्ब को भी महसूस किया। कहा जाता है कि यही तजुर्बात बाद में फिक्र की गहराई का असबाब बनी।
1: उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और फिर अपनी पूरी जिंदगी उर्दू जबान के फरोग के लिए वक्फ कर दी।
0: उर्दू तनकीद एक जमाने तक रिवायती उसूलों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी निस्प में दुनिया भर में नए नजरियात सामने आने लगे। नारंग साहब ने कदीमी रिवायत का एहतराम करते हुए नए नजरियात को भी तहकीकी पैमाने पर अहले अदब के रूबरू पेश किया।
1: गोपी चंद नारंग का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने उर्दू तनकीद को आलमी अदबी नजरियात से जोड़ा। जब यूरोप में साख्तियात पसे साख्तियात जैसे नजरियात जेरे बहस थे तो उर्दू में उन पर बहुत कम काम हुआ था। नारंग साहब ने उन नजरियात का गहरा मुताला किया और उन्हें उर्दू के तनाजुर में समझाया।
0: उनकी किताब साख्तियात पसे साख्तियात और मशरकी शेरियात तनकीद की अहम तरीन किताब में शुमार होती है।
1: गोपी चंद नारंग ने फकत नजरियाती तनकीद नहीं की बल्कि उर्दू के क्लासिकी शोरा पर भी गिरा कद्र काम किया, बिलखसूस गालिब, मीर और इकबाल।
0: नारंग साहब माहिरे लिसानियात की हैसियत से भी अपनी अलग पहचान रखते थे। उन्होंने उर्दू जबान की साख्त, उसके इर्तिका और मुख्तलिफ लिसानी मसाइल पर तहकीकी काम किया। उनकी किताब उर्दू जबान और लिसानियात इस मैदान में एक अहम हवाला समझी जाती है।
1: तालीम मुकम्मल करने के बाद नारंग साहब दरसो तदरीस से जुड़ गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो सदर शोबाए उर्दू रहे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। कहा जाता है नारंग साहब ने 60 से ज्यादा किताबें उर्दू अदब जबान और तनकीद पर लिखी।
0: बिल्कुल, उनकी अहम किताबों में साख्तियात पसे साख्तियात और मशरकी शेरियात, उर्दू जबान और लिसानियात, गालिब मानी आफरीनी, तफहीम व ताबीर, मीर का शेरी निज़ाम, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ और उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल।
1: जहाँ एक तरफ गोपी चंद नारंग साहब की शख्सियत इतनी बुलंद थी तो वहीं उनका मिजाज बेहद सादा। जो लोग उनसे मिले हैं उनके मुताबिक नारंग साहब नहायत शाइस्ता, नर्म गुफ्तार और मिजाज में इनकसारी नुमाया थी।
0: जी हाँ, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उनमें गुरूर नहीं था और वो नौजवान मुहक्किकीन की हौसला अफजाई करते, उनके सवालात सुनते और तफसील से जवाब देते थे। उनकी गुफ्तगू में इल्म भी होता और शगुफ्तगी भी। वो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का हौसला रखते थे, जो एक बड़े दानिश्वर की अहम निशानी समझी जाती है।
1: उनको मुतअद्दद एजाज से नवाजा गया, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान और पाकिस्तान का सितारा इम्तियाज काबिले जिक्र हैं।
0: उर्दू अदब का रोशन सितारा 15 जून 2022 को सरजमीन अमेरिका में हमेशा के लिए बुझ गया। दुनिया इस अजीम नक्काद को आज भी खिराज अकीदत पेश करती है।
1: सामईन, अभी हम जिक्र कर रहे थे गोपी चंद नारंग साहब का, जिन्होंने उर्दू अदब को नई फिक्री जहतें अता की। मगर उर्दू अदब की दुनिया सिर्फ फिक्र और तनकीद से नहीं बनती। इस दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो दिल के रास्ते रूह तक पहुंचती हैं। कुछ शायर ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी की आम सी बात को एक ऐसा मिसरा बना देते हैं कि वह लोगों की याददाश्त का हिस्सा बन जाता है।
0: सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। समय ये वो शेर है जिसने न जाने कितने आशिकों की जबान पर जगह पाई, कितनी महफिलों को रौनक बख्शी और कितने दिलों को अपनी सादगी और हुनर से मशहूर किया। और सामिन, क्या आपको पता है इस शेर के शायर कौन है?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इस शेर के तख्लीककार हैं जनाब शहरयार साहब। ये वही शहरयार साहब हैं जिनका पूरा नाम अखलाक मोहम्मद खान था।
0: 16 जून 1936 को वो उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पैदा हुए। उनके वालिद पुलिस अफसर थे और नज्मो जब्त के कायल थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी मुलाजमत अख्तियार करे, लेकिन शहरयार का दिल किताबों और अशार में लगता था। सामिन, कबल इससे कि शहरयार से मुतालिक मजीद गुफ्तगू करें, मुलाहिजा फरमाएं उन्हीं के चंद मशहूर अशार।
1: जिंदगी जब भी

0: तेरी बज़्म में लाती है हमें ये जमीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
1: स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का।
0: सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। वालिद की सरकारी मुलाजमत थी इसलिए उनका अक्सर ट्रांसफर होता रहता था, जिसकी वजह से उनका बचपन हरदोई, बुलंदशहर और कानपुर में गुजरा।
1: और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए और यहीं से उर्दू में एमए किया। उसके बाद यहीं शोबाए उर्दू में मुदर्रिस के फराइज अंजाम दिए। 1996 में प्रोफेसर बन के रिटायर हुए। अलीगढ़ उनकी पहचान बन गया।
0: अखलाक मोहम्मद खान का नाम उनके दोस्तों ने बदल दिया और शहरयार कहने लगे। वैसे शहरयार के मानी बादशाह होता है। वो अक्सर कहा करते थे कि नाम बड़ा जरूर है पर आदमी फकीर हूँ।
1: उनके शेरी सफर का आगाज 20 साल की उम्र में हुआ। 1956 में उन्होंने पहली गजल कही। 1960 से 1970 की दहाइयों में शहरयार के कई शेरी मजमुए मंजरे आम पर आए।
0: इसमें आजम 1965, सातवां दर 1969, हिजर के मौसम 1978 और ख्वाब के दर बंद हैं 1987 शाया हुआ। इन मजमुओं ने शहरयार को मकबूल शायर बना दिया और ख्वाब के दर बंद हैं पर तो बाकायदा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला।
1: इस तरह अदबी दुनिया में उनका मकाम मुस्तहकम हो चुका था, मगर शोहरत का एक नया दरवाजा खुलना अभी बाकी था। दरअसल बॉलीवुड में जब मुजफ्फर अली साहब ने फिल्म गमन बनाई तो उसके नगमे शहरयार से लिखवाए। उसके बाद इन दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई।
0: और फिर साल 1981 में फिल्म उमराव जान आई। इस फिल्म ने शहरयार को घर घर पहुंचा दिया।

0: जी हाँ, ये नगमा इतना खूबसूरत है कि अपने जमाने में इसने धूम मचा दिया। और मजेदार बात यह है कि आज भी ये नगमा लोगों की जबान पर मचल जाता है और वो गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं।
1: इस मशहूर शायर को अदबी खिदमात के लिए बहुत सारे एजाजात से नवाजा गया, जिसमें सबसे बड़ा अदबी एजाज ज्ञानपीठ एजाज अता किया गया।
0: उम्र के आखिरी बरसों में सेहत के मसाइल ने उन्हें घेर लिया, मगर कलम और फिक्र का रिश्ता बरकरार रहा। उनके अशआर मुसलसल पढ़े और सुने जाते रहे।

0: 13 फरवरी 2012 का दिन उर्दू अदब के लिए बेहद खसारे का दिन साबित हुआ।
1: जी हाँ, 13 फरवरी 2012 के दिन अलीगढ़ में अदब का दरख्शां चराग बुझ गया। शहरयार 75

आप सुन रहे थे लोक संगीत कलाकार थी रेणु भारती। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 14वीं कड़ी सुनते हैं।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में तीन चार या दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी,
2: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
2: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल

0: गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में, पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है। तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी दो ही दिन पहले की बात है। तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए, हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम-239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम-239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है, तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम-233 जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया ये पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का

0: लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप हो रहा है स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है, हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीमैन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वूंड्स पे, तो

0: से पता चला कि साहब इन्फेक्शन के लिए फायदा मंद रहता है, उसके बाद इसकी इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता है। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेनिसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिन्दुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही हैं, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90 थे, अभी हम करके 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, ना बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा

0: चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं और साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, ये जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाए कि ना जाए। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, जिस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, एआई इनोवेशन सेंटर्स, एआई फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे, तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है। 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुन्दर से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा, वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं बंटी और बबली फिल्म का ये गीत। आवाज़ है सुनिधि चौहान, उदित नारायण और साथियों की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीतकार हैं शंकर एहसान लाए।
1: वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

कुछ ना कहो, ये फिल्म का नाम है जिसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आदित्य नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत शंकर एहसान लायका।

का नाम है जिसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आदित्य नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत शंकर एहसान लायका।

झूम बराबर झूम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं और हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम यानी आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम का। तो देर किए बिना हम हाजिर होते हैं ये प्रोग्राम लेकर, लेकिन कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, रेडियो सेट छोड़कर कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत मिलते हैं आपसे।

श्रोताओं, हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, जो आधारित है हमारे श्रोताओं यानी आपके भेजे हुए ढेर सारे लेटर्स पर, ढेर सारे पत्रों पर। हालांकि एक समय था जब हमारे पास पत्रों की ढेर सारी संख्या होती थी, लेकिन अब ये संख्या थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। और कारण बहुत कुछ हो सकता है, लिखने की आदत छूटना, या फिर ये भी हो सकता है कि पोस्टकार्ड की उपलब्धता आपके पास है कि नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लिखने की आदत को जारी रखें और अपने खतों के माध्यम से अगर आकाशवाणी से आप जुड़े रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिजिटल युग में एक खूबसूरत सी चीज़ हमारी पुरानी वो हमारे साथ बनी रहेगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो पत्र आप भेजते रहिए, और पत्र भेजने का पता भी आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार बताए देते हैं। कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड है 221010, और इस पते पर हमें इंतज़ार है हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ढेर सारे पत्रों का। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे बहुत सारे नए श्रोता भी पत्र के माध्यम से इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, हम शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और आज आपकी फरमाइशें पूरे करने के लिए इस प्रोग्राम में आपके साथ बनी रहेगी आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार, और अब शुरू करते हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और इस कार्यक्रम में पहला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म मेरे सनम से। इसके लिए हमारे पास जिन श्रोताओं की फरमाइशें आई हैं ये हैं महेश नगर औरंगाबाद से रमेश देश पांडे, सारंग देश पांडे, नीलिमा देश पांडे। अगला पत्र है बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का। ये पत्र हमें भेजा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक वर्मा। बड़ी खंजर

गाजीपुर भागलपुर से भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, जमालुद्दीन नेपाली, सरफुद्दीन अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, नसीर प्रेमी, साबिर परवाना और अकरम हुसैन प्रिंस का। अगला पत्र है ईसागढ़ अशोक नगर से। हमारे श्रोता हैं विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकोबाई कुशवाहा, निशा, प्रियंका, इशिका, कपिल, ब्रजभान, बालाराम मेहर, नरेश प्रजापति, लक्ष्मण रायकवार, गजराज लोधी, मांगीलाल चंदेल, दातार सिंह शेखावत और हसीना भी मंसूरी। अगला पत्र जो हमारे पास आया है ये है ग्राम नवागांव मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं सोहन साहू, श्रीमती रुक्मिणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर, टाकेश्वर, कुशाल और तुलेश साहू। ये पत्र हमें भेजा है रुद्री, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा, शेफाली और निर्मल साहू। सरखोनैला, जिला जांजगीर चांबा, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं राजेश, रेखा साव, कमलेश, रवि साव, हनी, हिमांशु, डिम्पी और सुरेश जावलपुरकर। अगला पत्र है सेक्टर 28 बी प्रेस कॉलोनी चंडीगढ़ से। भेजने वाले श्रोता हैं यश कुमार वर्मा, सुषमा वर्मा, ज्योतिका वर्मा, लोकेश वर्मा और यश बाबू। तो अब कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ में आपने सुना मेरे सनम फिल्म का ये गीत। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने जो नया ज़माना आ रहा है मोबाइल और डिजिटल युग का, हम बहुत कुछ आश्रित हो जाते हैं अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। और सच पूछे तो लिखने की आदत थोड़ी सी छूट जाती है, बस वो साइन करने वाली जो एक चीज़ है वो हमें करनी होती है। लेकिन ऐसे में अगर हम एक बार फिर से, कहते हैं ना वो दुनिया गोल है, पुरानी चीज़ें वापस से फिर से आती हैं, तो ऐसे में अगर हम एक बार फिर पत्रों का सिलसिला शुरू करें तो ये बहुत अच्छी आदत होगी हम सब के लिए। क्योंकि जानते हैं, लिखावट से ना एक अपनापन सा महसूस होता है कि हमारे श्रोता हमारे नज़दीक हैं, उनकी लिखावट। और बहुत सारे लोग भी बताते हैं ना कि लिखावट से आदमी की पर्सनैलिटी का कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाता है। तो जैसे हमारी आवाज़ से आप हमें पहचानते हैं, हम आपकी लिखावट से आपको पहचानेंगे। तो पत्र हमें भेजते रहिए ताकि और भी नए श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े, और जो पुराने श्रोता पत्रों का सिलसिला समाप्त कर चुके हैं वो दोबारा से इसको शुरू करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गुमराह फिल्म से। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, तर्ज बनाई है रवि ने, और आवाज़ें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की हैं। और फरमाइश करने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो हैं बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। परली बैजनाथ से मास्टर आरजी फड़, अहमदाबाद से हैं भालचंद वड़के, जसीन मेहता, विकास वड़के, फुलवा मेहता और नीलेश वड़के। नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार सुमन और जगमोहन साहनी। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप, केशव पटेल और सरला प्रकाश।

रामनगर रोड, शांतिनगर, इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। पेनूर सोलार सोलापुर महाराष्ट्र से हैं सचिन गवली, किशोर गवली, सागर, बालाजी गवली और इनके परिवार के बाकी के सदस्य। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम और शमा परवीन। गर्नोखा लालगंज बिहार से ये पत्र भेजा है राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार अकेला और बड़क चौहान। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से हैं अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, नवासा अरहान बाबू, नवासी हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। ये पत्र है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा का। बनारस यूपी से हमारे श्रोता हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी और मोहित सिंह। यहीं से हैं काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा ताम्रकर, विजय लक्ष्मी और कुसुम लता सिंह। और अब वो गीत जिसके लिए ये फरमाइश आई थी, वो गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पर। गुमराह फिल्म से ये गीत है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की युगल आवाज में, बोल साहिर लुधियानवी के, तर्ज रवि की।

गुमराह फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और अगली फरमाइश जो आई है वो है एक हसीना दो दीवाने फिल्म की। और इसके लिए हमारे पास जिन श्रोताओं के पत्र हैं ये हैं अमिताभ, इन्होंने नाम ठीक से नहीं लिखा है, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, प्रेम साहू, बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली से राज आलम और मोहम्मद सदफ, रोजी अलीसा। परली बैजनाथ से आरजी फड, अष्टबंधु। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं गणेश दादा, कार्तिक और इनके परिवार के सदस्य। करवाडी प्रतापपुर इलाहाबाद से रामप्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रिया, शुभम और सौरभ वर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। गांव भड़भूजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक पत्र लिखा है और ऐसे ही आपकी संख्या बढ़ती रहे यही हमारी उम्मीद है। तिवर्ता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जोगेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता, मनीषा, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहेद्री बाई, मंजू, मानसी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम। और ये पत्र है लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी का, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा। और अब ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म एक हसीना दो दीवाने से, ये गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जा रहा है आपके रेडियो सेट पर। इसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। काफिल अजहर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

एक हसीना दो दीवाने, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। गीतों की फरमाइश और भी हमारे पास है, तो पूरी करते हैं अगली फरमाइश। और ये फरमाइश हमारे पास आई है लैला मजनू फिल्म के गीत के लिए। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, गम्भरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जसवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमारे श्रोता हैं वारिस अली खान, डॉक्टर सलीम अहमद, इस्लामुन निशा, मोहम्मद दानिश और समीर अहमद।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि हमारे पास पत्र कई सारे हैं जिन्हें शामिल करना भी ज़रूरी है। और फरमाइशों की बात करें तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है समाधि फिल्म से। और इस गीत के लिए हमारे पास जिन श्रोताओं के पत्र आए हैं ये हैं मॉडल टाउन से सुधीर, नूतन, सुमित, जतिन, मोहम्मद मोहम्मद समी और सुमित ढिल्लो। कई बार पत्रों में लिखावट ऐसी होती है कि नाम पढ़ने में कुछ गलती की संभावना बनी रहती है, तो अगर कोई नाम थोड़ा भी गलत पढ़ा जा रहा है तो उसके लिए मैं पहले से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला ये पत्र हमारे पास आया है ये है दौलत बाग मुरादाबाद से, जाफर हुसैन, मोहम्मद कासिम अली और जुनैद अब्बासी का। फजिलका पंजाब से है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानसी, शालिनी, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और खेड़ा परिवार के बाकी के सदस्य। नांगलोई दिल्ली से हैं मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, पारस मणि और नीतू। मॉडल टाउन पानीपत से हैं संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, नानू, नेहा, सागर, गुंबर और हिमांशु गुगलानी। जिला बरेली कस्बा हाफिजगंज से हैं शकील अहमद इदरीसी, पप्पू भाई इदरीसी, इशरत जहां इदरीसी, जुबैद अहमद, जुनैद अहमद, असद अहमद, आशकारा, बेबी ईशा और गुड़िया।

एयरपोर्ट थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी और इनके मित्रगण। तकिया मड़ियाहू जौनपुर से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमस शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद साजिद शाह। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। नाज मंसल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू और हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, नवासे हुमैरा, बच्चू शेख, चीना शेख, नाजिया नूरी नाज, साजिया। कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से हैं मोहम्मद फैजल शेख, नुजहत जहानाज, शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहानाज। कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार।

ग्राम चोचकपुर जिला गाजीपुर से हैं राम सकल चौधरी, रामजी साहू, सूरज बाबू, शिवम, सत्यम, आकाश, टुनटुन, संजय और सकल भाई। अंभई सिल्लोड जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। और अब वो गीत जिसे अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं समाधि फिल्म से, आवाज आशा भोसले की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और तर्ज राहुल देव बर्मन का।

दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी के साथ, और गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आरोप फिल्म से, और इसके लिए हमारे पास जिन श्रोताओं के फरमाइश आई है ये हैं सिमगा से श्रीमती सविता, प्रदीप जैन, मोनिका जैन और शिवानी जैन, गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल, और चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल, कटघोरा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल सिंह, श्रीमती शकुंतला, मनोज पाल सिंह, लखन पाल सिंह, दिनेश पाल सिंह और कुमारी कविता, बेमित्रा नयापारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और श्रद्धा साहू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, डबवाली हरियाणा से जेके बोकालिया, श्रीमती सुनीता बोकालिया, संजय अनिल मीनू बोकालिया, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, श्रीमती कुमारी साहू, अजय कुमार साहू और जयकिशन साहू, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं सुरेश कुमार गोलवे, दुर्गेश कुमार गोलवे, कुमारी प्रीति गोलवे, कुमारी दीप्ति गोलवे, विक्की गुड़िया, सिद्धू गोलवे और देवकी बाई, मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, परभणी से सीआर कुलकर्णी, जादला टाउन पंजाब से हैं बलराम चोपड़ा, भूकेश चोपड़ा, बीआर चोपड़ा, सुरिंदर संधू, रोहित संधू और रितेश संधू, संगम नगरी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो चुका है, करुआडीह से हैं राम प्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रिया गौतम और सौरभ वर्मा, मुस्लिमपुरा कोटवा वाराणसी से मुजीबुर रहमान, बरकत अली, रमजान अंसारी, कुर्बान अंसारी और शोएब उर्फ राजू।

कुर्बान अंसारी और शोएब उर्फ राजू। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकर, दिलीप वर्मा और विपिन गुप्ता। यहीं से हैं पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। और अब आपको सुनवा रहे हैं आरोप फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है माया गोविंद ने, संगीत है भूपेन हजारिका का और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और अब ये गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पर।

चलते चलते वक्त किस तरह बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और हमारे श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते करते हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, और इसके लिए हमारे पास जिन श्रोताओं की फरमाइशें आई हैं ये हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर और हसीना दिलशाद, परमवीर हाउस आदर्श नगर बटेंटा से हैं अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बट्टा परिवार के सदस्य हैं मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बट्टा, दसमले चौक परतूर जालना से जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना कांटे, आकांक्षा कांटे और दसमले परिवार और कांटे परिवार के बाकी के सदस्य, मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत, दसमले चौक परतूर से हैं सुरेश अप्पा दसमले, सौरभ दसमले, दीपक कांबले और शेख मुजीब शेख हबीब, धरसीवा से हैं छेदू लाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव, अखौरीपुर गोला जिला बक्सर से हैं जयराम बीन, सीता मुनी देवी, जानकी कुमारी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न कुमार, सुनील कुमार और वकील कुमार, पुरानी टोली जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और मास्टर अंसल नागदेव। और अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज में, ये गीत है, इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कुछ श्रोताओं के नाम रह गए हैं, ये हैं त्रिलोचन घाट वाराणसी से राजेंद्र प्रसाद केशरी, सावित्री केशरी, रंगोली केशरी और आशुतोष केशरी। सिगरा वाराणसी से हैं अजय प्रकाश। दौलतबाग मुरादाबाद से अनवर हुसैन और समीर मलिक।

श्रोताओं, हम भी आपको नहीं भूलेंगे और आप अपनी उपस्थिति बनाए रखिए पत्रों के माध्यम से। और हमारा पता आपको पता है, आपके पत्र आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड है 221010। हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। और अब इजाजत दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे

0: श्रोताओं, हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो

0: अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार।

0: उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
2: अप्पू,
1: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
0: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
0: वो
1: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ बता, डरना मत।
0: वो
1: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ
1: वो कांपते हुए बोला,
0: वो कंचा।
2: कंचा?
1: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
1: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
0: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
1: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
0: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: तब शक हुआ,
0: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
1: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
1: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
2: अप्पू,

0: क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
0: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
0: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे
0: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ,
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
0: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो झिझकता रहा।
0: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

श्याम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में

0: अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया।
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
4: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से

0: ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 0542227658।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें
10: 0542227658।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है मीरा दास। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इनके स्वर में तुलसीदास रचित ये भजन।

मीरा दास के स्वर में अभी आपने सुना तुलसीदास रचित भजन, और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में नानक का ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मीरा दास के गाए भजन। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित चितरंजन ज्योतिषी का गायन। राग है भी

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित चितरंजन ज्योतिषी का गायन, राग था भीम पलासी। आपके पास साथ तबले पर संगत की तपन कुमार बैनर्जी ने और सारंगी पर साथ दे रहे थे कन्हैया लाल मिश्र। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे।

0: इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। सहायक पुलिस आयुक्त भीलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पोस्ट रमना थाना लंका जनपद वाराणसी निवासी मोनकू पटेल के पुत्र सदानंद पटेल दिनांक 14

0: अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा, कदकाठी सामान्य है और चेहरा गोल है। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। आखिरी बार इन्हें नीली चेकदार शर्ट और काले पैंट में देखा गया था। जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पोस्ट शिवपुर थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र निवासी अनिल की पत्नी सुनीता दिनांक 19 फरवरी 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 34 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, एक गहरा बदन और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें काले रंग की साड़ी में देखा गया था। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम तेंदुई थाना सकलडीहा जनपद चंदौली निवासी राजेंद्र दिनांक 11 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 36 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है और कदकाठी सामान्य है। ये मानसिक रूप से कमजोर हैं। आखिरी बार इन्हें हल्के नीले रंग की टी शर्ट और हाफ सफेद पैंट में देखा गया था। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम बभन अरेहटा थाना करहगर जनपद रोहतास बिहार निवासी कालिका राम के पुत्र गुलशन कुमार दिनांक 19 मई 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 4 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है और कदकाठी सामान्य है। आखिरी बार इन्हें सफेद शर्ट और काले हाफ पैंट में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिली तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 15वीं कड़ी हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। आकाशवाणी के 90 वर्ष, हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान, ये परिचर्चा आप सुनेंगे रात्रि 10:00। परिचर्चा में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र, नरेंद्र आचार्य, डॉक्टर राम सुधार सिंह और प्रोफेसर निरंजन सहाय। मनहर उदास की गाई गजलें आप सुन सकते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:00। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और रेणु भारती के गाए लोकगीत के साथ ही सुनेंगे प्लास्टिक सर्जरी और इसकी उपयोगिता, इस विषय पर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह से की गई बातचीत। रेणु भारती के गाए लोकगीत आप लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर और आज के मुख्य आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, फिल्म संगीत और साथ ही शिवानी पांडे की वार्ता, साइबर फ्रॉड, डिजिटल युग की नई चुनौती। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहनें चर्चा, गीत संगीत और सेहत ज्ञान के साथ ही सुनेंगी डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी की कहानी फैसला। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हम लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग होगा शाम 7:31 पर। अलावा इसके आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर और शाम 7:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है। अब सुनिए इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से कॉमर्शियल परवाज़ खिदमात आज से शुरू हो गईं। पहले मरहले में 1.2 करोड़ मुसाफिरों की क़ुव्वत वाला ये एयरपोर्ट मुस्तक़बिल में 22.5 करोड़ मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। आखिरी मरहले में 5 रन

0: होंगे जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास की रियासतों के लिए ये एविएशन गेट बनेगा। इंडिगो मरहलेवार तरीके से लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज़्यादा शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ दीगर उड़ान कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की बुनियाद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को रखी थी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने रियासत के न्यूट्रिशन मिशन के दूसरे मरहले का भी आगाज़ किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश एक बीमार रियासत से मुल्क की तरक्की के इंजन में तब्दील हो गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: वज़ीर-ए-आला ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ डिवीजनों में महकमा तामीरात आम्मा के काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती कामों में तेजी लाई जाए और उन्हें मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने कल शाम गोरखपुर मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मजामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊँचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और

0: मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मजामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 बरसों में हिंदुस्तान की आलमी शिनाख्त बदल गई है।
1: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत नुमाया तरक्की की है। इस सिलसिले की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के उन्वान से एक खसूसी सीरीज़ नशर कर रहा है। आज हम 2047 तक भारत के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ़ को हासिल करने के लिए जदीद ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी एक छोटे से संदेश के बाद।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
8: 0542227658।
6: ओ
9: 0542227658।
6: लो अभी फोन लगाता हूँ।
9: 0542227658।
10: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
11: सखियों के साथ,
12: सखियों की बात,
11: सखियों के जज्बात,
13: गृह लक्ष्मी।
12: श्रोता सखियों को शबनम का प्यार भरा नमस्कार और इला जी नमस्कार।

0: आपको भी नमस्कार और बहनों को भी बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार।
1: और देखिए इला जी, अगर हम आपसे पूछें और अपनी सखियों से पूछें कि आपको शॉपिंग करना कितना पसंद
0: भाई शॉपिंग तो मुझे लगता है मेरा तो मेरा मेरी सभी सखियों का सबसे फेवरेट काम होगा।
1: क्योंकि कहते भी है ना कि अगर बात की जाए शॉपिंग की, तो एक शगल सा होता है कुछ लोगों का शॉपिंग करना, और कुछ लोग शॉपिंग में इतने समझदार होते हैं ना इला, कि लोग कहते हैं कि जब भी आपके घर परिवार में या सखियों में क्यों जब कुछ खरीदना हो तो उन्हें जरूर साथ में लेके जाना, क्योंकि उनकी मोल भाव और चीजों को परखने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी है।
0: बिल्कुल सही बात है। हर घर में, हर फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसी बंदी होती है जिसकी शॉपिंग करने की समझ, मतलब बहुत समझदार होती है। कहा
1: हाँ
0: जाता है स्मार्ट शॉपर होती हैं ऐसी
1: जी।
0: लोग।
1: और कहते भी वैसे भी कि अगर सखियों आप शॉपिंग करने जा रही हैं तो थोड़ी सी समझदारी तो रखनी चाहिए। और कुछ लोग को बस शॉपिंग करना इसलिए कर लेते हैं।
0: देखिए शॉपिंग कहा जाता है एक तरह से एक ये एक टॉनिक का भी काम होता है, एक मेडिसिन भी होता है, स्ट्रेस से हमें रिलीफ देता है। तो ये रिलीफ तब देता है जब हमारी शॉपिंग भी समझदारी भरी हो, यानी कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ हो, अगर हम उससे जुड़ी हुई चीज़ें और सही प्राइस में सही चीज़ें पा रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी हमारी कुछ बहनें होती हैं ना कि बाजार गई खरीदने सामान, डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रहा है या कोई ऑफर चल रहा है, तो जो नहीं भी चाहिए या जो भविष्य में कभी ज़रूरत जिसकी हो सकती है ऐसी चीज़ें भी आज ही वो खरीद करके रख लेती हैं, और समय आने पर लगता है अरे यार इसका तो फैशन चला गया या इसकी तो डेट ही
1: और
0: एक्सपायरी हो गई।
1: सबसे ज्यादा लुभावना तो ये लगता है सेल, एक पे एक फ्री वाला। और ऐसे में ना पता ही नहीं चलता कि कब एक पे एक फ्री वाली चीज हम लेके चले आए, और जब ले आते हैं तो थोड़ी देर बाद जब दिमाग में आता है कि ओ, जब कुछ चीजें जैसे 99 रुपए वाली होती है, जैसे 499 या 899, तो लगता है अरे 899, लेकिन बहन जी जरा ये तो सोचिए पूरा 1,000 रुपए खर्चा हो
0: हाँ भाई, आठ सौ
1: रहा है।
0: निन्यानवे मतलब 1 रुपए और जोड़िए तो सीधे
1: हाँ
0: 900 हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो है ना, हम सब समझते हैं, बहुत समझदारी भी रखते हैं, लेकिन जब भी कोई ऑफर आता है या कोई सेल होती है तो हमारा दिमाग शायद उतना काम नहीं करता है। और लेकिन सखियों, अगर थोड़ी सी समझदारी रखी जाए ना, तो हर खरीदारी जो है वो आपके काम की होती है। जैसे इलाज आपने कहा ना कि स्ट्रेस भी कम होता है, तो विंडो शॉपिंग में होता है स्ट्रेस कम। आप चलती जाइए, देखते रहिए, बस चीजें देखिए, खरीदिए मत, तो
0: लेकिन
1: आपका स्ट्रेस कम होगा।
0: और एक तो और शॉपिंग का जो क्लास है ना वो इतना
1: हाँ
0: अपग्रेड होता जा रहा है कि भाई अगर ठीक है बाजार जाने में सक्षम नहीं है तो आजकल तो बस मोबाइल उठाइए, ऑनलाइन शॉपिंग का भी चलन हो गया, बहुत
1: जी
0: सारे ऐप हो गए जिसमें आप घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। तो जहाँ ये शॉपिंग हमें सुविधा देते हैं उसके साथ ही साथ अगर हमें थोड़ी सी सावधानी न बरते हम
1: जी
0: तो ये शायद हमारे जेब पे भी असर पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि कोई शॉपिंग जो ऐप है उसमें देखिए लगता है अरे यार ये तो तुरंत बस अब खरीद ही लो,
1: क्योंकि
0: बहने
1: टाइम
0: जाती
1: होता है ना
0: हाँ
1: लिमिटेड, कि इसके बाद आपका जो ऑफर है वो खत्म होने
0: तुरंत
1: वाला
0: वो
1: है।
0: बाय नाउ में जाती है, फटाफट खरीद लेती हैं, और जब 3 दिन 4 दिन बाद अगर वो घर आ रहा तो लगता है अरे यार ये तो फालतू का हमने खरीद लिया, बस दूसरे की बातों में आके या फिर कहीं विज्ञापन देखा खरीद लिया। तो हम बहनों से यही कहेंगे बिल्कुल बहनों आप खरीदिए, अगर आपको पसंद है तो पहले उन चीजों को सिलेक्ट करके आप अपने जो ऐप है उसके कार्ट में डाल के छोड़ दीजिए, हफ्ते 10 दिन तक आप उसमें रहने दीजिए। रोज आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अगर आपको उसकी जरूरत ज्यादा होगी तो 10 दिन के बाद भी आप उसको खरीदेंगे, और अगर जरूरत नहीं होगी तो 2 से 4 दिन के बीच ही आपको लगेगा अरे यार इस आइटम को तो मैंने फिजूल में कार्ट में डाला है,
1: और
0: और
1: कब
0: ऐसे आप बच
1: हाँ
0: जाएंगे।
1: और ये भी होता है ना इला कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजों की डेट हम नहीं देखते। जैसे बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल में या कहीं जाइए तो वहां पे ऑफर होता है कि बिग ऑफर हो गया, कोई बड़ी चीज हो गई, और लगता है कि बड़ा सेविंग वाला है, लेकिन उसमें जब हम खरीद के ले आते हैं तो एक्सपायरी डेट नहीं देखते। पता चला कि बस एक्सपायरी डेट 1 महीने के अंदर थी और वो चीज हमारी खत्म नहीं होती, तो पता चला कि सिर्फ हम 10 ही दिन उसको इस्तेमाल किए थे और बाकी जो है वो खराब हो गया। तो थोड़ी सी समझदारी तो रखना चाहिए, है
0: हाँ,
1: ना।
0: और एक और बात हमारी बहनें अक्सर करती हैं, अक्सर कभी कभी हम भी कर देते हैं कि आजकल जो जो शॉप चले ना मेगा स्टोर है, हर तरह के सारे सारे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलते हैं, ऐसे में बहनें अक्सर क्या करती हैं ना बाजार तो निकल जाती हैं लेकिन वो अपनी शॉपिंग की लिस्ट नहीं बनाती हैं, सोचती हैं अरे जो सामान हमको जरूरत है सामने दिखेगा हम ले लेंगे,
1: जी
0: बस इस चक्कर में वो बिना मतलब के भी बहुत सा सामान इकट्ठा कर लेती हैं। तो बहनों आप अपने घर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जब भी बाहर निकलिए तो शॉपिंग की लिस्ट जरूर बनाइए, किसी भी सामान सामान को लेने से

0: पहले खुद से 2 क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्यों लें और क्या करेंगे इसका जरूर दिमाग में रखिए, तभी आप कोई चीज आप
1: और
0: लीजिए।
1: एक चीज और है ला कि बजट की बात है, हम अपना बजट बना के भी लें। कभी कभी पहले तो ऐसा होता था कि हमारे पास पर्स में पॉकेट में जितना पैसा होता था उतना खरीदते थे। अब क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बजट का कुछ दिमाग में ही रखना नहीं है। तो ऐसे में भी आप वॉलेट रख सकती हैं अपने, ऑनलाइन में भी एक पॉकेट रखिए, उसमें बस उतना ही पैसा रखिए जितना आपका बजट है, तो उससे भी आपके पैसे बच जाएंगे। और अगर सबसे अच्छा तरीका है ना, तो बता दीजिए किसी को कि क्या लेके आना है।
0: क्या लेकर के आना है,

0: कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे सामने एक छोटी सी बात बड़ी बन के खड़ी हो जाती है, लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया।
1: ऐसा होता है
0: जैसे कि
1: जैसे कि कोई फैसला लेना हो, तो कभी कभी लगता है ना कि फैसले में अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो पूरी जिंदगी का रुख बदल जाता है, और कुछ फैसले अगर आप सही ले लीजिए तो जिंदगी बदल जाती
0: बदल
1: है।
0: जाती है बिल्कुल।
1: और ऐसी ही कुछ जिंदगी बदली है इस कहानी में भी। कहानी आज हम सखियों के लिए लेके आए हैं फैसला, और कहानीकार हैं डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी।
0: बिल्कुल।
2: शकुंतला ऑफिस से घर लौट रही थी तभी फ्लैट नंबर 4 की मिसेस शुक्ला ने कहा, शकुंतला जी, आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप शाम को जरूर आइएगा। अच्छा भाभी, कहकर वह घर आई। कमरे में पंखा ऑन कर कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उसने किचन में जाकर चाय बनाई। फ्रिज में सुबह की ब्रेड रखी थी, उसे बटर लगाकर वह खाने बैठी। अकेले रहने पर खाने पीने का भी मन नहीं करता, इसीलिए वह शाम को ब्रेड बटर या चाय वगैरह पर ही रह जाती। चाय खत्म हो गई, उसने घड़ी देखा, अभी तक शाम के 5 ही बजे थे। पूजा तो शाम के 6 बजे से शुरू होगी, क्योंकि मिसेस शुक्ला के पंडित जी को पूर्णिमा के दिन इतने घरों में कथा बांचनी पड़ती है कि मिसेस शुक्ला के घर आते आते उन्हें देर हो ही जाती। चलो आज कॉलोनी के कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, घंटा दो घंटा आराम से समय कटेगा। ये सोचकर वह तैयार होकर मिसेस शुक्ला के घर चल पड़ी। शकुंतला के घर से फ्लैट नंबर 4 के बीच एक पार्क पड़ता था, वह कुछ देर वहीं बैठी रही। वैसे तो उसे ऑफिस से ही घर आने में रोज 6 बज जाते हैं, किंतु आज शनिवार होने से हाफ डे हो गया था। हाफ डे होने पर जहां ऑफिस के बाकी लोग खुश रहते कि चलो आज घर जाने की छुट्टी मिली, वहीं शकुंतला के लिए यह समय काफी भारी पड़ता, क्योंकि घर में खालीपन, अकेलापन और सन्नाटे की चीखों वाली झिंगुरों की आवाज के सिवाय उसके लिए और कुछ नहीं रहता। देर तक पार्क में बैठे रहने के बाद वह मिसेस शुक्ला के घर चल दी। वहां पूजा शुरू हो गई थी। कॉलोनी की कुछ औरतें जो कथा सुनने कम और अपने घर की कथा अधिक सुनाने वाली होती हैं, वे सब जमा हो गई थीं। कथा सुनते सुनते एक दूसरे की साड़ी, पर्स वगैरह के बारे में पूछताछ चल रही थी। शकुंतला ने सभी को देखकर औपचारिक अभिवादन किया और एक किनारे बैठ गई। तब तक मिसेस शुक्ला उसके बगल में आकर बैठी और बोली, शकुंतला जी कहिए, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ, और अपनी बताइए, बबली और मिंटू ठीक है ना? शकुंतला ने पूछा। हाँ हाँ सब ठीक है। आपको एक खुशखबरी देनी है, आपको पता है बबली की शादी तय हो गई है, मिसेस शुक्ला ने बड़े हर्षित स्वर में कहा। शादी? बबली की शादी? मगर भाभी अभी तो उसका 18वां भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो बहुत छोटी है वो, शकुंतला ने मिसेस शुक्ला को समझाने का प्रयास किया। अरे नहीं दीदी, जब मैं 18 बरस की थी तब तक मेरे गोद में मेरा बड़ा बेटा मिंटू आ चुका था, मिसेस शुक्ला ने अपनी बड़वानगी झाड़ते हुए कहा। कुछ देर तक शकुंतला अपनी पड़ोसन को कम उम्र में बेटी की शादी ना करने के लिए और उसे आगे पढ़ाने लिखाने और स्वावलंबी बनाने की बात बताती रही। उसके बाद मिसेस शुक्ला शकुंतला के पास से उठकर कमरे में पीछे बैठी कॉलोनी की अन्य महिलाओं के पास चली गईं। फिर शायद मिसेस शुक्ला ने उन पड़ोसियों से कुछ कहा, क्योंकि तभी उनमें से मिसेस खत्री ने तेज आवाज में कहा, अरे भाभी, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वही दूसरों को भी कुछ पाता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे लोगों के लिए तो क्या अर्थी के फूल और क्या सेज के फूल, वो भला इसमें अंतर क्या जाने। अच्छा बहन, जब बबली बिटिया की मंगनी होगी तो हमें जरूर बताना, मैं आऊंगी। इतना कहकर मिसेस खत्री चली गई, लेकिन उनका कटाक्ष सुनकर शकुंतला का दिल दुखी हो गया। सत्यनारायण भगवान की पूजा भी अब तक समाप्त हो चुकी थी। शकुंतला और देर तक उन कॉलोनी की महिलाओं के बीच रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह भी मिसेस शुक्ला से अनुमति और पूजा का प्रसाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। घर आकर वह फिर से मिसेस खत्री की बातें सोचने लगी। आज से 22 साल पहले उसके भी हाथों में मेहंदी लगी थी, कितनी बार माँ ने उस दिन उसकी बलाइयाँ ली थीं। सहेलियां बार बार कह रही थीं, शकुन तुझे आज बचा कर रखना होगा, वरना चांद को अपनी झोली में पाकर दूल्हे मियाँ तो बेहोश ही हो जाएंगे। अरे घूंघट में चेहरा छुपा कर रखना, वरना दूल्हे मियाँ जयमाल से पहले ही होश हवास खो बैठेंगे। और बाकी सहेलियों की खिलखिलाहट की गूंज से उसका पुराना जर्जर मकान भी मुस्कुरा उठा था। बचपन में ही शकुंतला के सर से पिता का साया उठ गया था, फिर मामा के कहने पर कि ज़्यादा पढ़ लिख जाने से शकुन की शादी में दिक्कत आएगी, माँ उसके लिए लड़का ढूंढने की चिंता में पड़ गई। फिर मामा लोकनाथ उसके लिए रिश्ते भी लाने लगे, मगर सभी जगह दहेज के कारण बात बिगड़ जाती। शकुंतला स्नातक की

पढ़ाई करने लगी थी। ट्यूशन करके वह अपनी पढ़ाई का भी खर्च निकाल लेती। पढ़ने में तो वह मेधावी छात्रा थी ही, साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का भी जोश उसमें था। बार बार दहेज की वजह से ना सुनते सुनते माँ का हौसला टूटने लगा कि कभी उनकी बेटी के हाथ भी पीले होंगे या नहीं। तभी एक दिन उसके मामा घनश्याम दास के बेटे का रिश्ता लेकर आए। घनश्याम दास का 2 मंजिला मकान और कपड़े की दुकान थी और अच्छी खासी आमदनी थी। मामा घनश्याम दास के बेटे का फोटो भी लाए थे और माँ ने उसे पसंद कर लिया। मगर जब शकुंतला ने लड़के की पढ़ाई के बारे में पूछा तो मामा ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने बहुत पूछने पर बताया कि लड़का 8वीं पास है। शकुंतला के लिए यह बात अपने आप में एक सदमा थी कि वह स्नातक की पढ़ाई कर रही है और उसका होने वाला पति हाई स्कूल भी पास नहीं है। मगर माँ और मामा के आगे उसकी एक न चली और नियत समय पर उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ ने बरसों से सहेज कर रखी साड़ियाँ, जेवर सब बक्से में सजाने शुरू कर दिए। बहुत कम खर्च में शादी हो रही थी, इसीलिए बहुत तामझाम नहीं किया गया था। शकुंतला ने भी अपनी भावी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसकी माँ हर रोज उसे ससुराल में सबकी प्रिय बहू और पति को प्रसन्न रखने वाली पत्नी बनने के नए नए फार्मूले बताती। शादी के दिन घर के दरवाजे पर बारात आ गई। धूम धड़ाके और बाजे गाजे के साथ उसकी बारात का स्वागत और द्वारचार के लिए माँ चली गईं। बाद में पड़ोस की औरतें, लड़कियाँ और शकुंतला की सहेलियाँ हंसती खिलखिलाती उसे लेकर मंडप में दूल्हे के पास पहुँची। शादी की रस्में शुरू हो गईं। पंडित जी कभी मंत्र पढ़कर, कभी चावल, कभी नारियल, कभी चंदन, कभी फूल आदि हाथ से उठाकर थाली में रखने को और कुछ सामान अग्नि में डालने को कह रहे थे। तभी शकुंतला ने देखा कि दूल्हे के हाथ में कई जगह कुछ निशान बने थे। वो सोचने लगी, ये कैसे निशान है? फिर उसने देखा तो दूल्हे की उंगलियां भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही थीं। उसके हाथों में ठीक तरह से गति नहीं हो रही थी। फिर उसने घूंघट के पीछे से ही अपने होने वाले पति का चेहरा ध्यान से देखा तो उसका मुंह सूखा हुआ, चेहरा पिचका, आंखें धसी हुई और उसे काफी देर तक बैठने में भी परेशानी हो रही थी। इतनी देर में शकुंतला अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसका होने वाला पति ड्रग एडिक्ट है, यानी नशे का आदि। फेरों के लिए पंडित जी ने वर और वधु को उठने के लिए कहा। कांपती टांगों से सेहरा बांधे उसका भावी पति अरविंद खड़ा हुआ। शकुंतला अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर कांप उठी। उसने तुरंत एक कड़ा फैसला किया और शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि वर को नशे की आदत है। एक नशेड़ी से शादी करके मैं अपनी जिंदगी कुएं में नहीं डालूंगी। उसके बाद उसकी माँ और मामा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वह अपने फैसले पर अडिग रही। बारात वापस लौट गई। शकुंतला विवाह के फेरों तक पहुँच कर भी विवाह से वंचित रह गई। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता मामा ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा। कॉलोनी और मोहल्ले के कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जरूर शकुंतला का बाहर किसी और से प्रेम संबंध रहा होगा, तभी उसने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद शकुंतला ने अपनी स्नातक की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। भले ही शादी टूट चुकी थी मगर उसे अभी भी उम्मीद थी कि कोई सपनों का राजकुमार उसके लिए सफेद घोड़े पर बैठ कर आएगा और उसे खुशियों के नए संसार में लेकर जाएगा। ये बात और है कि ये सुनहरे सपने उसकी बोझिल आंखों की नींद से ही धीरे धीरे ओझल होते गए। शकुन अब ऑफिस में काम करने लगी थी। एक दिन वह भी आया जब उसकी माँ भी उसका साथ हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। साथ ही अपनी बेटी की शादी का सपना भी वह साथ ही लेती गई। शकुन के काले बालों में अब सफेद बालों की बिजली चमकने लगी थी। चेहरे का कसाव और सुंदरता सब दूर हो रहे थे। कभी कभार उसके कॉलेज की कोई सहेली रास्ते में मिल जाती तो कहती, तू अपने ऑफिस में ही किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती शकुन, कम से कम बुढ़ापे में किसी का साथ तो रहेगा। तब शकुंतला सोचने लगती कि क्या औरत को समाज में अकेले रहने का कोई हक नहीं है? क्या समाज हमारा इतना आगे बढ़ चुका है कि एक औरत को इतना हक दे चुका है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी पुरुष से शादी कर ले? क्या समाज में सम्मानित रूप से जीवन बिताने के लिए शादी का कवच मान मुकुट होता है? जब शकुंतला को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता तो वह पास के पार्क में चली जाती और वहाँ के बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों के बीच उसके अनुत्तरित प्रश्न कहीं खो जाते। लेकिन जब वह इस तरह लोगों के ताने सुनती तो उसका मन अपने फैसले पर फिर से मंथन करने लगता और वह सोचने लगती कि क्या औरत इतनी कमजोर है कि उसे समाज के बनाए नियमों से अलग अपना फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है? आखिर क्या गलत किया था उसने? एक अपाहिज नशेड़ी आदमी को, जो कि एक पुरानी ढाल से भी बदतर था, उससे के साथ शादी करना उचित था? ऐसे व्यक्ति को भी अपनाना क्या भारतीय संस्कारवान नारी का प्रतीक होता है? तब उसके स्वाभिमानी मन के किसी कोने से आवाज आती, नहीं, बिल्कुल नहीं। रात काफी हो चुकी थी।
शकुंतला अपनी खिड़की से बाहर

0: आकाश में चमकते हुए ध्रुव तारे को देख रही थी, जो उसी की तरह अकेला और शांत था, मगर अपने भविष्य के प्रति आशावान। शकुंतला सोचकर मुस्कुरा दी। उसने सोचा, उसका फैसला सही था, बिल्कुल सही, कोई माने या ना माने। स्त्री के लिए पुरुष केवल उसका हमराही है, मंजिल नहीं।
1: बहनों, अभी हम सब ने सुनी ये कहानी फैसला। डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी इस कहानी को सुना रही थी। कहानी जो भी होती है हमारे इर्द गिर्द होती है, और देखा जाए तो हमारी जो कहानी की नायिका है, ऐसी इस तरीके की जो स्थिति होती है बहुत सारी महिलाओं के साथ होती है, कि क्या कभी कभी उनके लिए भी इतना मुश्किल हो जाता है कि कोई फैसला लेना या फिर अपने लिए खुद से जीने के लिए सोचना।
2: बिल्कुल। और ये भी बात है ना कि सखियों, देखिए, जब हम फैसला करते हैं किसी चीज़ का, ख़ास करके एक स्त्री जब फैसला करती है, तो बहुत सारे लोग उसे कहते हैं ना कि वरगलाना, किसी को भड़काना, और उसके हर फैसले को गलत समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप दृढ़ निश्चय से अपने किसी भी फैसले को लेने के लिए तैयार हैं, सोच समझ कर ले रही हैं, और आप जिसके लिए फैसला ले रही हैं वो भरोसेमंद हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भरोसा होना चाहिए, खुद पे भी भरोसा हो और जिसके लिए आप फैसला कर रही हैं उस पे भी भरोसा हो। क्योंकि कहते हैं रिश्ते जो है ना वो भरोसे पे टिके होते हैं। बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल टूटने से टूटते हैं, भरोसा टूटने से तो बच ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने भरोसे को पक्का रखिए और उसी से भरोसा रखिए, उसी से बात रखिए जो आपका मान रखता हो।
1: बिल्कुल सही बात है कि अक्सर होता है ना कि जो हमारी बहनें होती हैं या फिर आज के समय में जो हमारी टीनएजर्स हैं, ये भी बहुत जल्दी सब पे भरोसा कर लेती हैं। तो बहनों और बेटियों, आपसे हम यही कहेंगे कि भरोसा कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके कीजिए, और सबसे बड़ी चीज है अपनी हर एक बातों को, हर एक सीक्रेट को सबसे शेयर मत कीजिए।
2: आजकल तो शेयर करने का बड़ा नशा सा है लोगों को, क्योंकि कुछ भी पेट में नहीं रखना, सोशल मीडिया पे शेयर कर देना, और इसमें बहुत सारी चीजें सच्ची होती हैं और बहुत सारी मन लुभाने वाली होती हैं, नजर को लुभाने वाली होती हैं, और फेक भी होती हैं।
1: और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, लेकिन सोच समझ के, ऐसा ना हो कि आप अपनी पूरी प्राइवेसी को आप सामने खोल करके रख दीजिए या फिर अपनी हर एक बातों को बता दीजिए, ताकि जो दूर बैठा हुआ, जिसको आप नहीं भी जानती हैं, आपके बारे में सब कुछ जान जा रहा है, अपनी विचारधारा अलग बना ले रहा है और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, जो कि कल को आपके लिए तकलीफदायक हो सकती है।
2: और एक बात और है हिला, कि अगर आप पे कोई भरोसा करता है तो उस कसौटी पे खरी उतरिए, क्योंकि सिर्फ सामने वाला ही खरा नहीं उतरेगा, आपको भी उतरना है। तो भरोसा अगर आप पे कोई रख रहा है तो उसके मान रखिए, उस कसौटी पे खरी उतरिए, नहीं तो फिर इस प्यारा सा गीत सुन लीजिए।

0: मिला। देखिए दिल वाले ना मरे क्योंकि दिल वाले नहीं रहेंगे तो फिर बाकी दुनिया कैसे
1: कैसे
0: चलेगी।
1: चलेगी, बिल्कुल सही
0: और
1: बात
0: इस
1: है,
0: खूबसूरत से दुनिया को देखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी खूबसूरती को भी बनाए
1: बरकरार
0: रखें।
1: रखे। भाई खूबसूरती चेहरे के अलावा भी शरीर के बहुत सारे अंगों की होती है।
0: और खास करके अगर हम बात करें हाथ की, चेहरे को तो हमारी सखियां खूब चमका लेती हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हाथ पांव जो है ना वो थोड़े से अधूरे रह जाते हैं।
1: और हाथ भी अगर देखा जाए, अगर नाखून बहुत सुंदर है, चमकदार है, थोड़े से बढ़े हुए हैं, तो अपने आप हाथ हाथ सुंदर लगने लगते हैं।
0: लेकिन सुंदरता के लिए सखियों आप ये भी करती होंगी, नेल पेंट लगा लेती होंगी, लेकिन ओरिजिनल जो नाखून खूबसूरत होते हैं ना उससे आपके स्वास्थ्य का पता चलता है कि आप कितनी हेल्दी हैं। क्योंकि अगर आपके नाखून कमजोर हैं, पीले हैं, चमकदार नहीं हैं तो जरूर आप बीमार हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है बहनों, छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको आप अगर इस्तेमाल करेंगी घर में तो अपने नाखूनों को स्वस्थ बना सकती हैं। अब जैसे कि सेब का सिरका लीजिए, उसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए 1 चम्मच, और थोड़ी देर हाथ को डुबो करके रखिए, तो हाथ के मैल साफ होंगे, नाखून भी साफ होंगे, उनके मैल साफ होंगे, और साथ में कोई अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो भी दूर हो जाता है और नाखून स्वस्थ हो जाते
0: और
1: हैं।
0: अगर आप सेब खा लेती हैं ना तो आप अंदर से बड़े पौष्टिक आहार ले सकती हैं, और वैसे भी कुदरती तौर से आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपके नाखूनों में चमक आ जाएगी। खान पान का भी बहुत ख्याल रखें, भरपूर पानी पीजिए और नेल पेंट जो है ना थोड़ी
1: अच्छी
0: क्वालिटी का
1: क्वालिटी
0: लगे।
1: का लगाएं। और भाई घड़ी भी इशारा आप कर रही है, तो बहनों अपना ख्याल रखिएगा, अपनी खूबसूरती को निखारते रहिएगा, संवारते रहिएगा, हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिएगा।
0: और आज के लिए बस इतना ही, अपनी सखी शबनम
1: और मैं इला आपसे इजाजत चाहते हैं।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार हैं रेणु भारती। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं रेणु भारती के स्वर में कहरवा।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं रेणु भारती। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में छप रहिया।

0: रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
1: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
3: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में

0: खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मैक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैथियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो चुके हैं और अब हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा उनके खास कार्यक्रम का, यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का। और आज का ये फरमाइशी गीत एक्सप्रेस है, आधारित है भोजपुरी फिल्मी गीतों पर, जिसके लिए हमारे श्रोता हमें व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे।

यानी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय हो चुका है। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको अपनी फरमाइशें भेजनी है, ये है 7905519981, यानी 7905519981। और अब उन फिल्मों के नाम जिनके लिए आपको हमें संदेश भेजना है, ये फिल्में हैं बलम परदेसिया, आइल बसंत बहार।

हार, घर गृहस्थी। फिल्मों के नाम एक बार फिर नोट कर ली, बलम परदेसिया, आइल बसंत बहार और घर गृहस्थी। इन फिल्मों के लिए कब भेजना है आपको संदेश, और एक बात का खास ख्याल रखिए श्रोताओं कि अगर आपने एक फिल्म के लिए भेजा है, या कोशिश ये करें कि पहला गाना हम अगर बलम परदेसिया का बजा रहे हैं तो आप उसके लिए ही संदेश भेजें, क्योंकि अगर दूसरे गीत के लिए संदेश आता है और वो नीचे चला जाता है तो फिर हम पढ़ नहीं पाते, छूट जाता है, तो ऐसे हमारे श्रोताओं को भी निराशा होती है। तो सबसे पहले आपको कार्यक्रम में सुनवाएंगे बलम परदेसिया फिल्म का ये गीत, और उसके लिए हमें इंतज़ार है हमारे श्रोताओं के संदेशों का। और एक बात का ख़ास ख्याल आपको ये रखना है कि अगर आप संदेश भेज रहे हैं तो समय का ध्यान रखिए, क्योंकि ये संदेश हम 2:58 तक ही पढ़ पाएंगे, इसके बाद के आए संदेश हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार, और देर ना करते हुए सुनवाते हैं आपको सबसे पहले ये गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ में आपने सुना बलम परदेसिया फिल्म का गीत, बोल अनजान के थे और संगीत चित्रगुप्त का था और फरमाइशें आप सबकी थी। महरेव जौनपुर से आशीष कुमार और जलालपुर जौनपुर से

विनय कुमार और राजा महरी। अगला जो संदेश हमारे पास आया है ये है सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। चोचक बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी। बड़ेरी बाजार मड़ियाहू जौनपुर से रवि साहू, शिवम, यश, रूही और राज बहादुर साहू। अगली जो फरमाइश है ये आई है बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी और कल्लू और मल्लू अंसारी। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। गांव खारिया डाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बेटा बजाज।

अडार नांदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा, बदरुद्दीन अंसारी, अनवल अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, अहमदनगर बजडीहा से, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कौशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, इन्होंने पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमारे पास आया है ये है बंधवा बाजार माधोपुर इमलिया जौनपुर से विशाल मिश्रा का। श्री गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदु गिरी, विशाल गिरी और इन्होंने हमें संदेश भेजा है। ग्राम पहुंची उर्फ मर्दा नहीं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से, नवागढ़ कटई

जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत मयंक जीत और पुष्पांजलि वर्मा, गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उज्जवल दास मानिकपुरी, पटेलनगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह और रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु, प्रीत, प्रांजल, प्रकृति, इन्होंने मेहंदीगंज मड़ई राजा तालाब वाराणसी से ये संदेश भेजा है और गम्हापुर गंगापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, स्नेहा कुमारी, जागृति, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार सिंघनकर और अर्पिता जी, कोटवा कपिलधारा सरायमोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, एनरी ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और इनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी, महेंद्र कुमार, सरिता, सानवी, आशीष, सतीश, पूजा, नीतू, सानवी, रत्तू, नंदलाल, इन्होंने संदेश भेजा है लेकिन जगह का नाम नहीं लिखा है, भीमपुर भदोही से। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा ने संदेश भेजा है, गांव नारी पचदेवरा गाजीपुर से। मोताला महाराष्ट्र से है विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर, सुमंत प्रजापति बलिया से इन्होंने हमें संदेश भेजा है और जिला पटियाला पंजाब से है सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत कौर, मनु, बटाऊबीर रामनगर वाराणसी से यथार्थ केशु, शिवांश, रिशु, नेहा और अनुष्का, गंज टुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और पहले गीत के साथ ही बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आ जाते हैं और संदेश पढ़ने में ही समय इतना जाया होता है कि दूसरे गाने का नंबर नहीं आ पाता है। तो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आइल बसंत बहार फिल्म से, जिसे आवाज दी है मन्ना डे और गीता दत्त ने। इस गीत को लिखा है कौशिक ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने और जिन श्रोताओं की फरमाइश थी उनके नाम हम आपको इस गीत के बाद सुनवाएंगे।

मन्ना डे और गीता दत्त की युगल आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे आयल बसंत बहार फिल्म से। श्रोताओं, आपका इतना प्यार इस कार्यक्रम को मिलता है और इतने सारे संदेश आते हैं कि सबका नाम पढ़ने के लिए हमें गानों की संख्या कम करनी पड़ती है। ये फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा डी बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, राजा बाजार बेहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र, अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि, आकाश, शिवप्रकाश, मोनी प्रजापति और राहुल प्रजापति, कोरोता वाराणसी से इन्होंने संदेश भेजा है, सकलडीहा चंदौली से इमृति यादव का संदेश आया है और शिवपुर वाराणसी से असगर अली, अशोक कुमार प्रजापति, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू, मिहिरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर, प्रणीता सिद्धांत गवांडकर, अर्जुन गवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवांडकर, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी और प्रिंस एकांश गवांडकर, बड़ा बम चौक खंडवा से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल, रायपुर कोरोता मंगारी वाराणसी से चंगा सिंह, अनिल सिंह, उषा सिंह, इनके पुत्र अंकित सिंह और लकी सिंह, अंकिता सिंह, अमित सिंह और उनकी पत्नी सपना सिंह, पुत्र राजवीर सिंह और पुत्री यशिका।

सिंह। गांधी चौक पोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और उनके साथी।

सिंह यादव और कयूम शाह, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नीति कुमारी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से ये हैं, और बोरखेड़ा पीनामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी से हैं बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अनु यादव और अरुणेश यादव। चोचकपुर गाजीपुर से हैं भास्कर दुबे, अनीश राजभर, मनीष, आशीष, आकर्ष, सोनभरसा, खानपुर, चुनार, मिर्जापुर से संदेश भेजा इन्होंने, और आपसे यही विनती है कि आप कार्यक्रम में एक ही बार संदेश भेजें। राज पैलेस मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन और कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी, अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा और इनके साथियों ने संदेश भेजा गांव नारी पशदेवरा गाजीपुर से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हैं, डोंगर गांव रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूफा आफरीन, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, और अवधराम, उमेश, मुकेश, अनुराग, अनुपम, अमृता, स्मृता, इन्होंने संदेश भेजा है गुरैनी जिला गाजीपुर से, और ये हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, सोपान ताड़े और नारायण इंगले। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं घर गृहस्थी फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने और बोल समीर के, संगीत चित्रगुप्त का, और हमारी जो फरमाइश करने वाले श्रोता हैं उनके नाम हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे।

गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र साहू, सोनू आशीष और कपिल साहू, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, अक्षय सेन, शुभम सेन, शिवपुर बागान हावड़ा से शाहबाज अंसारी, अब्बास अंसारी, रजिया खातून, नजमा खातून और प्यारी नवासी हयात मोइन अंसारी।

जान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के बाकी के सदस्य। काली माता मंदिर दिलदार नगर गांव श्री किसुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा ने हमें संदेश भेजा है। यहाँ से चोचक बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी का ये संदेश है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और राज पैलेस मोहनाथ भंजन। उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा से मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कोरासी वैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू, अजय सिन्हा और इनके साथियों ने गांव पचारी पचदेवरा गाजीपुर से संदेश भेजा है।

रामगढ़ कैंट से हमारे श्रोता हैं महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, आजमगढ़ लालगंज कटौली से शबरीन, जैनब, सोनी, मोनी, आमिर, अफजल, अरहम, इंशाल, भूजी और जुगनू। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी।

कार्यक्रम का आखिरी संदेश आया है दिलदार नगर गांव से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और कयूम शाह। और इस संदेश के साथ ही अब अपनी रेडियो दोस्त संजू तिवारी को इजाजत दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। आपसे दोबारा फिर किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 3:28 हो रहे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे है आरंभ होती है हमारी आज की शाम की सभा। सभा के आरंभ में आइए सुने फिल्म संगीत।

1942 अ लव स्टोरीज फिल्म से ये गीत आपने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुना। आइए अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, आशिकी 2 फिल्म से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और पलक मुछाल ने। पलक मुछाल ने इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और इसे संगीतबद्ध किया है जीत गांगुली ने।

आशिकी 2 फिल्म से ये गीत आपने सुना। आवाज थी अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, अज्ञात फिल्म से आवाज है श्वेता पंडित की। गीतकार प्रशांत, संगीतकार बापी।

ये गीत आपने अज्ञात फिल्म से सुना। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: दोस्तों कहते हैं जिंदगी हर रोज हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है, कभी एक नई सीख, कभी एक नई मुस्कान, तो कभी किसी अपने की कही हुई ऐसी बात जो बरसों तक दिल में गूंजती रहती है, और शायद यही छोटी छोटी बातें हमारी बड़ी बड़ी यादें बन जाती हैं।
1: बिल्कुल, और इन्हीं यादों, एहसासों और अनकही बातों के बीच अगर कोई आपका हाथ थाम कर कुछ देर साथ चल पड़े तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है।
0: तो बस दोस्तों, आपकी इसी शाम में थोड़ी सी मुस्कान घोलने, कुछ नए रंग भरने और दिल से दिल तक जुड़ने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युवाड़ी लेकर।
1: यहाँ बातें भी होंगी तो कुछ पल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, और कुछ बात चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाएंगी, और कुछ शायद आपके दिल में घर कर जाएंगी।
0: क्योंकि हमारा मानना है कि हर दिन एक नई किताब है, हर इंसान एक नई कहानी, और हर शाम अपने साथ लाती है दुनिया की भाग दौड़ को। जरा सा विराम दीजिए और हमारे लिए साथ जुड़िए, और इस सफर में आपके साथ हम हैं आपके रेडियो दोस्त, मैं मोनिशा
1: और मैं तनिष्का। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो चलिए इस खूबसूरत मुलाकात की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से कही जाती है और कुछ सीधे संगीत दिल तक पहुंचा देते हैं हमारी बातें आपको। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: दोस्तों एक पल के लिए जरा रुकिए, आज आप जो भी कर रहे हैं वो छोड़िए और बस एक काम कीजिए, अपने घर के उस कोने के बारे में सोचिए जहाँ दादा अखबार पढ़ते हैं, जहाँ दादी माला फेरती है और

0: जहां नाना चुपचाप बैठे रहते हैं किसी का इंतजार करते हुए।
1: और वो इंतजार आपका है, सिर्फ आपका।
0: लेकिन हम है कि स्क्रॉल करने में बिजी हैं, बाद में बात करते हैं कहते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं और बाद में मौसम बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों बाद में कभी नहीं आता। और शायद यही बात हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश में इतना बिजी हो जाते हैं कि वर्तमान में मौजूद उन लोगों को समय देना भूल जाते हैं जो हमारे खुशियों में जिनका सबसे बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मुनीषा। वैसे पता है मुनीषा, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरी दादी के पास हर सवाल का जवाब होता है।
0: अरे वाह।
1: चाहे स्कूल का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई कहानी सुनानी हो या मेरे डांस में कोई नया स्टेप बताना हो, उनके साथ बिताया हर पल आज भी एक खूबसूरत याद बनकर मेरे साथ है।
0: बिल्कुल सच कहा। और शायद हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा बड़ा ज़रूर होता है जिसकी डांट में भी प्यार होता है, जिसकी बातें समय के साथ और ज़्यादा कीमती लगने लगती है।
1: लेकिन कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम उन्हीं लोगों को समय देना भूल जाते हैं क्योंकि अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों हमारे जीवन में माता पिता, दादा दादी और घर के बड़े बुजुर्ग सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि वे अनुभव, संस्कार और जीवन के अनमोल खजाने होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया भर में कई बुजुर्ग ऐसी हैं जो अपमान, मानसिक तनाव और कभी कभी शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना भी करते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका उद्देश्य समाज को यह बताना है कि बुजुर्गों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार करना केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य भी है।
0: जब हम दुर्व्यवहार शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में मारपीट या हिंसा की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि बुजुर्गों की अनदेखी करना, उनकी बातें को महत्व ना देना, उन्हें अकेला छोड़ देना, आर्थिक रूप से उनका शोषण करना या बार बार उनका अपमान करना भी बुजुर्ग दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है।
1: और सबसे चिंता की बात तो ये है कि कई बार ये सब कुछ घर की चार दीवारी के भीतर ही होता है, जहाँ बुजुर्ग सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं।
0: जरा सोचिए, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हमारे लिए अपनी खुशियों का त्याग किया, जीवन की कठिनाइयों से बचाया, अगर वही लोग अपने जीवन में के अंतिम पड़ाव में अकेलापन, उपेक्षा और असम्मान महसूस करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।
1: सही कहा, लेकिन इस विषय को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी से भी देखने की जरूरत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन बातचीत, धैर्य और सम्मान से इन दूरियों को कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों बुजुर्गों को हमेशा बड़ी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, कई बार उन्हें केवल थोड़ा समय, कुछ अपनापन और यह एहसास चाहिए होता है कि वे आज भी परिवार का महत्वपूर्ण अंग है।
1: एक छोटी सी बातचीत, साथ बैठकर चाय पीना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना या उनकी सेहत और ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये छोटे छोटे कदम उनकी जीवन में बड़ी खुशियाँ ला सकते हैं। और यह भी याद रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र किसी की कमजोरी नहीं बल्कि अनुभवों की पूंजी है।
0: दोस्तों आज जो युवा है कल वे भी बुजुर्ग होंगे, इसलिए जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वही समाज वास्तव में सभ्य और संवेदनशील कहलाता है।
1: तो दोस्तों बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो थोड़ा अपनेपन की। आज उनके लिए थोड़ा समय निकालिए और उनके पास जाकर बैठिए,
0: चाय पीजिए साथ में और बस पूछिए आज कैसा लगा आपको। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, उन्हें बस आप चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपकी आवाज़ और आपका साथ चाहिए।
1: वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जाके जल्दी मिलिए उनसे।
0: क्योंकि याद है ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं और बाद में सब बदल जाता है।

0: दोस्तों, आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। अब बैंकिंग से लेकर खरीदारी, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, लगभग हर काम इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से होने लगा है। तकनीकी के ने जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसके साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं।
1: इन चुनौतियों से सबसे बड़ी चुनौती है साइबर फ्रॉड, यानी कि इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी। ऐसे में जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी इम्पोर्टेंट विषय पर आधारित है हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय है साइबर फ्रॉड, डिजिटल युग की नई चुनौती, और वार्ताकार है शिवानी पांडे। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम शिवानी पांडे है। आज मैं आप सबके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, साइबर फ्रॉड, डिजिटल युग की एक नई चुनौती। क्या आपने कभी कोई संदिग्ध ईमेल या एसएमएस पाया है, या कभी किसी अनजानी लिंक पर क्लिक करके परेशान महसूस किया है? आज हमारा देश डिजिटल क्रांति के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर तरफ साइबर फ्रॉड के रूप में एक अदृश्य शत्रु हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम सब भली भांति जानते हैं कि आज तकनीक हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग बन चुकी है। हमारी सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक बैंकिंग, खरीदारी, शासकीय सेवाएं और सामाजिक सरोकार, सब कुछ एक इसी आभासी दुनिया पर निर्भर है। लेकिन जहां तकनीक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं इस डिजिटल चकाचौंध के पीछे साइबर अपराध का एक काला साया भी मंडरा रहा है। साइबर फ्रॉड यानी हमारी आंखों के सामने बिना किसी शोर के हमारे संवेदनशील डाटा, गाढ़ी कमाई की चोरी। आज हम

मिलकर इस गंभीर चुनौती की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे यह अदृश्य जाल कैसे बुना जाता है और कैसे अपनी सूझबूझ से हम खुद को इसका शिकार होने से बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले इस डिजिटल माया जाल को समझते हैं। आखिर साइबर फ्रॉड है क्या? सरल शब्दों में कहें तो जब कोई अज्ञात व्यक्ति या संगठित गिरोह इंटरनेट, मोबाइल एप्स या संचार माध्यमों से का दुरुपयोग करके आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी पहचान या आपका डाटा चुरा लेता है, और तो इसे साइबर अपराध कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई ईमेल भेजकर आपकी बैंक डिटेल मांगे या आप दे दें, यह फिशिंग है। फोन पर आकर बैंक अधिकारी बनकर आपसे ओटीपी मांगना, यह वॉइस फ्रॉड है। आपने कभी किसी बहुत सस्ते ऑफर वाली वेबसाइट पर खरीदी की और सामान ना मिला, तो यह नकली ई कॉमर्स स्कैम हो सकता है और इसे नकली ई कॉमर्स स्कैम भी कहते हैं। अब एक बड़ा और विचारणीय सवाल यह उठता है कि आखिर ये साइबर अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कुछ तो मुख्य और बुनियादी कारण होगा जिसको हम एक स्तर में समझेंगे। अगर देखा जाए तो पहला, डिजिटल निर्भरता में असीमित वृद्धि। हमारा जीवन और हमारे डिजिटल पदचिन्ह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज राशन की दुकान से लेकर हम बड़े बिजनेस तक सब कुछ ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं। जितना ज्यादा लोग ऑनलाइन आएंगे, अपराधियों के लिए शिकार ढूंढना उतना ही आसान हो जाएगा। दूसरा, सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति उदासीनता। आज भी एक बड़ी आबादी डिजिटल माध्यमों का उपयोग तो कर रही है लेकिन सुरक्षा नियमों से अनभिज्ञ है। कमजोर पासवर्ड रखना, बिना सोचे समझे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कर देना सीधे तौर पर अपराधियों को निमंत्रण देने जैसा है। और आज यह अपराधी एक साधारण चोर तो नहीं रह गए हैं, यह अपराधी एक तकनीकी आधुनिकीकरण को अपना रहे हैं। यह अत्यधिक आधुनिक जैसे बॉट, ऑटोमेशन, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पलक झपकते ही हजारों लोगों को निशाना एक साथ बनाया जा सकता है। यह यहाँ तक सीमित नहीं है। आप जानते होंगे कि भौगोलिक सीमाओं केवल भारत तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपराध एक देश की सीमा में बंधा नहीं है। भारत में बैठा किसी व्यक्ति के साथ ठगी करने वाला अपराधी सात समंदर पार दूसरे देश में बैठकर कंप्यूटर चला रहा होता है। ऐसे में वैश्विक नेटवर्क या अलग क्षेत्राधिकार की सीमाओं के कारण हमारी कानून व्यवस्था और पुलिस के लिए उन तक पहुंचना बेहद ही जटिल कार्य बन जाता है। अब इस अपराध को कुछ आम भाषा के रूप में देखते हैं या जानते हैं कि आप इन्हें तुरंत पहचान सकें। जैसे कि पहला, फिशिंग। डिजिटल युग का एक ऐसा प्रतिरूपण है यह, जहां आपको एक ईमेल आता है जो हूबहू आपके बैंक जैसा होता है या दिखता है। आप उस लिंक को खोलते हैं और अपनी गोपनीय जानकारी को वहां पर दर्ज कर देते हैं। पलक झपकते ही आप का खाता खाली हो जाता है। दूसरा, स्मिशिंग या वॉइस फ्रॉड। इसमें अपराधी फोन या मैसेज के जरिए सीधे आपसे संपर्क करते हैं। वे खुद को बैंक अधिकारी बताकर किसी भी तकनीकी समस्या का डर दिखाते हैं और आपसे आपके ओटीपी मांगने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से वो आपको इस फ्रॉड में फंसा सकते हैं। तीसरा, अगर देखें नकली ई कॉमर्स की साइट, यह तो बहुत ही प्रचलित है। यह सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर अविश्वसनीय प्रलोभन यानी बहुत सस्ते ऑफर दिखाई जाते हैं और इसी लालच में आकर भुगतान कर देते हैं उपभोक्ता, लेकिन सामान उनके घर तक नहीं पहुंचता। रैंसमवेयर, चौथा, यह एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड का अगर कहा जाए तो एक भाग है, जिसमें आपका एक कंप्यूटर सिस्टम को पूरा हैक करके इस पे डिजिटल हमला करके अपराधी आपके पूरे डाटा को, आपके पूरे फाइल को बंधक बना लेता है और वापस खोलने के लिए वह एक मोटी रकम की मांग करते हैं। पांचवा, पहचान की चोरी। इसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड
या अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जाता है, आपकी जानकारी के बिना आपके नाम का अवैध रूप से प्रयोग किया जाता है, आपके नाम पर कर्ज ले लिया जाता है या खरीदारी कर ली जाती है। अब यह गंभीर प्रश्न यह उठता है कि यह साइबर फ्रॉड हमें किस

जठर तक चोट पहुंचाता है। देखा जाए तो यह एक त्रिकोणीय आघात है। अब इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं। पहला, व्यक्तिगत रूप से देखें तो पैसा चला जाता है, मानसिक तनाव होता है और निजी जानकारी लेकर आप परेशान होते हैं। संस्थागत रूप से कंपनियों का भरोसा टूटता है, नुकसान और कानूनी समस्याएं बढ़ती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक भरोसा डगमगा सकता है। इसीलिए यह व्यक्तिगत भी है, सामूहिक भी है और राष्ट्रीय भी है। तो आखिर इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए? तकनीक को कोसने के बजाय हमें खुद को सुरक्षित करना होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आज से आप अपने डिजिटल जीवन की सुरक्षा के लिए इन 5 अचूक कवचों में से कम 3 को आज से लागू करें, जिसमें से पहला है जटिल कूट शब्द या द्विस्तरीय सुरक्षा। आपने सोशल मीडिया पर अपने बैंकिंग अकाउंट्स के लिए हमेशा एक मजबूत और कठिन पासवर्ड रखें और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य रूप से ऑन करें। दूसरा बिंदु अगर देखें तो सावधानी से क्लिक करें। किसी भी अज्ञात ईमेल या संदेश में दिए गए लिंक पर तब तक क्लिक ना करें जब तक आपको भेजने वाले की प्रामाणिकता और वेबसाइट के URL की जांच ना कर लें। तीसरा, सार्वजनिक नेटवर्क से दूरी। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे भी सार्वजनिक वाईफाई लगी होती है, तो उससे भी बचें। जहां अगर रेलवे स्टेशन हो गए, कैफे या किसी भी मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग लेन देन या ऑनलाइन खरीदी ना करें, क्योंकि यह नेटवर्क हैकर्स के सबसे आसान ठिकानों में से एक होता है। चौथा, सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण। अपने मोबाइल एप्स, कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें और एक विश्वसनीय एंटीवायरस का उपयोग करें। पांचवा, संदेह होने पर सीधा संवाद करें। यदि आपके पास बैंक या किसी सरकारी संस्था के नाम पर कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आता है तो तुरंत फोन काटें और अपने स्थानीय बैंक शाखा में जाकर वहां उसका सत्यापन करें। हमेशा याद रखें कि कोई भी असली बैंक कभी भी आपसे फोन पर आपका पासवर्ड या OTP नहीं मांगता। जहां एक तरफ नागरिकों की सजगता आवश्यक है, वहीं इस डिजिटल युद्ध को जीतने के लिए सरकार, नियामकों और प्रशासनिक संस्थानों के निगत प्रयास भी उतने ही अनिवार्य हैं। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां पर देखा जाए तो सरकार को अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर तक मजबूत करना होगा। इसके लिए देश में अत्याधुनिक त्वरित प्रतिक्रिया दलों का नेटवर्क तैयार करना होगा, जो किसी भी डिजिटल हमले की पहचान कर उसे पलक झपकते ही निष्क्रिय कर सके। डिजिटल साक्षरता को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, यह सरकार का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल भाषा में जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे, क्योंकि अपराधी अक्सर इनकी सरलता का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं होती, इसीलिए भारत सरकार को अन्य देशों के साथ वैश्विक प्रत्यार्पण और न्याय सहयोग को और मजबूत करना होगा, ताकि 7 समंदर पार बैठे अपराधियों को भी कानून के सिकंजे में लाया जा सके। डाटा सुरक्षा कानूनों को कठोरता से लागू करना होगा। नागरिकों की निजी जानकारी का सौदा करने वाले कंपनियों, लापरवाही बरतने वाले संस्थानों पर लगाम कसने के लिए डाटा सुरक्षा कानून को पूरी कड़ाई से लागू करना होगा। जब तक कड़े नियम नहीं बनेंगे, तब तक यह डिजिटल सुरक्षा की नींव को मजबूत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें कड़े नियम को कठोरता से लागू करना होगा। अंत में मैं अपनी बात को समेटते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल सुरक्षा केवल एक तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि

0: हमारी जागरूकता और हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वह हमारी सतर्कता का विकल्प नहीं हो सकती। अगर हम अपनी सजगता को अपना हथियार बना लें और प्रशासनिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कड़ाई से निभाती रहें, तो इस डिजिटल युग की कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। आज इस वार्ता से मैं आप सभी को एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सामूहिक संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ। अपने परिवार, अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ बैठकर इस विषय पर 5 मिनट की चर्चा करें और आज ही अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित करने के लिए कम से कम एक डिजिटल रक्षा कवच अनिवार्य रूप से अपनाएं। चाहे वह अपना पासवर्ड बदलना हो या अपने अकाउंट में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करना हो, याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। सजग नागरिक, सुरक्षित भारत। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी पांडे, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वार्ता से बहुत जानकारी मिली होगी और आगे आने वाले भविष्य में आप इसको ज़रूर समझेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, नए शब्द केवल हमारी भाषा को शुद्ध नहीं बनाते, बल्कि वे हमें नए विचारों, नई भावनाओं से भी जोड़ते हैं। इसलिए नए शब्द को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं हमारे आज के दो नए शब्द।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि शब्दों का

0: जादू कुछ ऐसा है जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता है, और इसलिए हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे शब्द जो आपको वो जादूगर बना दे। और आज का हमारा जो शब्द है वो है, जो हमारा आज का हिंदी का शब्द है वो है वाक्पटुता। वाक्पटुता का अर्थ होता है प्रभावशाली, स्पष्ट और कुशल ढंग से बोलने की क्षमता, यानी कि ऐसी बोलने की कला जिससे श्रोता प्रभावित हो। इसके पर्यायवाची होंगे सुवक्ता, वाणी कौशल और भाषण कौशल। और इसके वाक्य प्रयोग होगा, उसकी वाक्पटुता के कारण सभी लोग उसके विचारों से प्रभावित हो गए। या फिर हम कह सकते हैं, एक अच्छे नेता के लिए ज्ञान के साथ साथ वाक्पटुता भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने और याद रखें, तो अपने व्यक्तित्व में वाक्पटुता का गुण ज़रूर ऐड कर लीजिए।
1: वाह, सच में अच्छे शब्द और उन्हें प्रभावशाली ढंग से कहने की कला किसी भी व्यक्ति की पहचान बन सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: और दोस्तों, आज का हमारा इंग्लिश वर्ड है ऑप्यूलेंट, OPULENT, ऑप्यूलेंट, विच मीन्स वेरी वेल्दी, लग्जूरियस और रिच इन अपियरेंस और स्टाइल। हिंदी में बताएं तो समृद्ध, ऐश्वर्यपूर्ण, भव्य या विलासितापूर्ण। इसके सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची होंगे लग्जूरियस, लैविश, वेल्दी एट्सेट्रा। और इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस तरह होगा, द किंग लिव्ड इन एन ऑप्यूलेंट पैलेस डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, द होटल इज नोन फॉर इट्स ऑप्यूलेंट इंटीरियर्स एंड वर्ल्ड क्लास सर्विसेज।
0: तो दोस्तों, आज हमने सीखा वाक्पटुता यानी आपकी बातों को प्रभावशाली बनाती है, और ऑप्यूलेंट किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की भव्यता और ऐश्वर्य को दर्शाता है।
1: और हमें उम्मीद है कि आज के ये दो शब्द आपके शब्दकोश का हिस्सा जरूर बनेंगे।
0: शब्दों का ज्ञान तो हो गया, लेकिन इतिहास जानना भी कितना जरूरी होता है ना, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि बीते समय की कौन सी घटनाओं ने आज के समय और समाज में क्या प्रभाव डाला है।
1: बिल्कुल, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास दर्ज है, तो
0: आइए बताते हैं आपको बिना किसी देर के। दोस्तों,
1: सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल विंड डे यानी कि विश्व पवन दिवस की। हर वर्ष 15 जून को पूरी दुनिया में ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में यूरोप में विंड डे के रूप में हुई थी, और 2009 में इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा।
0: और दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1977 में स्पेन में लोकतंत्र की वापसी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। आपको बता दें कि तानाशाह फ्रांको की मृत्यु के लगभग 2 वर्ष बाद 15 जून को तानाशाह फ्रांसिको को आयोजित किए गए थे। तानाशाह फ्रांको की मृत्यु के लगभग 2 वर्ष बाद 15 जून 1997 को स्पेन में पहली बार स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन किया गया था। इस चुनाव ने स्पेन को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: वर्ष 1908 में आज ही के दिन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और एशिया के प्रमुख शेयर बाजार में से एक माना जाता है।
0: दोस्तों, अब बारी है उसका जिसका इंतजार आपको बड़ी बेसब्री से रहता है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे की।
1: हाँ, होगा क्यों नहीं, आखिर यह हमारे श्रोताओं को देता है मौका सीधे हमसे जुड़ने के लिए, यानी कि हमारे प्रश्नों के सही जवाब देकर विनर्स बनने के लिए। तो चलिए बिना देरी के बताते हैं हमारा आज का प्रश्न।
0: बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल के प्रश्न और सही जवाब, और जिन साथियों ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम भी।
1: दोस्तों, कल हमने जो प्रश्न किया था वो ये था कि वित्त वर्ष 2026-27 में 9 हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसका उत्तर था प्राइड ऑफ हिल्स योजना। और हमारे वो साथियों
0: ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम है
1: प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, रवि मौर्य सिमरौल आजमगढ़ से, चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पिपरलोड सरगाम छत्तीसगढ़ से।
0: इसी के साथ जिन दोस्तों ने ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा एमपी से सही जवाब दिए हैं उनके नाम है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इसी के साथ ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता वाई वर्मा।

रिंग रोड नर्मदा नगर एमपी से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर एमपी से हैं प्रभुदयाल शुदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शुदे। और संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामाबाई रायकवर। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे नियमित श्रोता वंदना नागनपुरी का आज जन्मदिन है। आपको बता दें कि ये हमारी रेगुलर श्रोता है

0: उज्ज्वल हो और जीवन में खूब तरक्की करें। और हाँ, हर रोज हमें ऐसे ही सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजते रहिए। एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, अब बारी है आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, हाल ही में नियुक्त भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है। जल्दी से जाइए, इसका आंसर हमें भेजिए और बन जाइए विनर्स। और आपको पता है ना इसका आंसर आपको हमें कहाँ भेजना है। इसका आंसर आप हमारे इंस्टा हैंडल youth_AIR पर भेज सकते हैं या फिर
1: मेल आईडी youth_AIR_VNS@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
0: और चलिए तब तक इंजॉय करते हैं ये गीत।

0: दोस्तों कहा जाता है कि अवसर उन्हीं का साथ देते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। इसलिए हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते हैं रोजगार और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
1: बिल्कुल, तो चलिए बिना देरी के बताते हैं आज की रोजगार सूचना।
0: दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न गैर फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1484 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
1: इच्छुक अभ्यर्थी 13 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
0: इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aims.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों सड़क पर चलते समय हम सब जल्दबाजी में रहते हैं, किसी को ऑफिस पहुंचना होता है, किसी को कॉलेज तो किसी को अपने घर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ सेकंड बचाने की कोशिश हमें कितनी बड़ी परेशानी में डाल सकती है?
1: एक लाल बत्ती तोड़ना, बिना हेलमेट बाइक चलाना, सीट बेल्ट ना लगाना या फिर मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना,
0: ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ कई बार जिंदगी भर पछतावा बन जाती है। दोस्तों सड़क पर चलना केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। यातायात नियम सिर्फ कानून नहीं बल्कि हमारी और दूसरों की सुरक्षा का कवच भी है।
1: कल्पना कीजिए, एक परिवार खुशी खुशी किसी समारोह में जा रहे हैं और रास्ते में एक व्यक्ति तेज रफ्तार से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है और एक पल में सब कुछ बदल जाता है।
0: दुर्घटना सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें से अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण यातायात नियमों की अनदेखी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हादसों को रोका जा सकता है।
1: और वो कैसे?
0: हेलमेट पहनकर, सीट बेल्ट लगाकर, निर्धारित गति सीमा का पालन करके और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करके।
1: जब आप
0: ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान करते हैं दोस्तों, तो आप सभी समाज के निर्माण में भी योगदान देते हैं। याद रखिए, सड़क पर आपकी सावधानी ही आपकी सबसे

0: सुरक्षा है। और देखिए, क्योंकि नियमों का पालन करेंगे तभी सुरक्षित कर मना पाएंगे, और अब हमें भी नियमों का पालन करना होगा दोस्तों, क्योंकि समय का इशारा हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के कार्यक्रम आपके साथ मैं मोनिशा
1: और मैं तनिष्का,
0: हमें दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से आज वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू हो गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज ओइजा वाणिज्यिक उड़ान के शुरुआत से जुड़ल उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने। इस मौका पर वहां के कहने की पहला फेरा में उड़ान सेवा का क्षमता हर साल 1,20,00,000 यात्रियों के हुई। पहला फेरा पूरा भैले के बाद एकर क्षमता हर साल 7 करोड़ से बेसी भैले का संभावना बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण में जमीन देवे वाले किसानन का आज लखनऊ में पहला उड़ान सेले पर स्वागत कैले। वहां के किसानन के साथ बातचीत कैली। इस मौका पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन में किसान लोगों के प्रति आभार जतौले।
4: भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है। इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर में एक नया इतिहास रच दिया है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट में योगी का पाती साझा करत बुजुर्ग लोगों का सम्मान कैले के अपील कैले। हमें
5: मुख्यमंत्री ने कहा है कि वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं का सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संयोग से इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अवश्य अपनाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि देश का मध्यम वर्ग राष्ट्र निर्माण में खास योगदान देले हवे। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहले कि पछिला 1 दशक में सरकार आम लोगों के जीवन स्तर के सुधारे बदे बढ़िया बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरन आ सार्वजनिक सेवा पर ढेर ध्यान देले हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में पछला 12 बरिस में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतन से देश में महत्वपूर्ण प्रगति भइल हो। बरिस 2047 ले भारत के विकसित राष्ट्र बनौले का लक्ष्य पूरा कैले के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण बदे सरकार के कोशिशन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश

0: है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गोरखपुर और उत्तर प्रदेश एसटीएफ एगो संयुक्त अभियान में काल वाराणसी के एगो कुरियर कंपनी पर छापा मार के 124 किलो गांजा जब्त कैले हो। ए दौरान एगो ड्रग तस्करों के गिरफ्तार कैल गए हवे। समाचार पूरा भई, नमस्कार।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। पहले सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे प्लास्टिक सर्जरी और इसकी उपयोगिता विषय पर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह से की गई बातचीत। साथ ही रेणु भारती का गाया लोकगीत भी सुनेंगे। रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनहर उदास। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे परिचर्चा जिसका विषय होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान। प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र, नरेंद्र आचार्य, डॉक्टर राम सुधार सिंह, प्रोफेसर निरंजन सहाय।

रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायन कलाकार होंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां। ये सी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं इस विषय पर जानकारी। और प्रातः 6:10 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु और 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव। छह बजकर 40 मिनट पर आप सुनेंगे रोज की तरह श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में प्रातः 7:31 पर और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे ध्रुपद गायन। कलाकार होंगे आशुतोष भट्टाचार्य। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर कलाकार होंगे रामनाथ और साथ।

题。और दिन 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी ज्योति यादव। दिन 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी बातचीत, जिसका विषय होगा महिलाओं के लिए एआई की उपयोगिता। इस विषय पर जानकारी देंगे आशीष झा। प्रातः 7:00 आप रोज की तरह आनंद उठाएंगे गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का। 8:45 पर मधुरिमा, 10:00 झंकार कार्यक्रम का, और दिन 11:00 फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे, जो कि आपके ही भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
6: कार्यक्रम में पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्सर फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज दी है सुनिधि चौहान और केके ने। गीतकार समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

अक्सर फिल्म से ये गीत आपने सुनिधि चौहान और के सिंह की आवाज केके की आवाज में सुना। आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, अनकही फिल्म से ये गीत जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने।

अनकही फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज थी सोनू निगम की। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिमेशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकान्तरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थ व्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये

0: पश्चिम बंगाले च श्वः यावत् प्रबल वृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। ऋतु विज्ञान विभागेन राजस्थाने, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, ओडिशायां, मध्य प्रदेशे च झंझावातस्य नारंगवर्णीय संचेतना प्रसारिता। अपि च उक्तं यत् दक्षिण पश्चिम प्रावेट प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते। ऐषमः फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडन देशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशिया देशं 5 अंकान्तरालेन पराजयत्। स्वीडन देशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीयं विजयं प्राप्नोत्। अनेन विजयेन स्वीडन देशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलं आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम
1: राम राम राम हो सुद्धू भैया।
0: हाँ भैया जितन
1: अरे
0: बतावा
1: का
0: का
1: हाल
0: हाल।
1: चाल बा मौसम का हो?
0: अरे तो लगला चिकोटी काटे, मौसम के मिजाज एकदम लाल बा तमतमायल बा। ओकरे ऊपर से तू पूछत हुआ कि का मिजाज हो, है
1: अरे भैया
0: चिकोटिया ने काटत हुआ तू।
1: अनुभव कराव रही कि मौसम का देखा मिजाज बड़ा अलग हो, और बड़ा उमस हो, बड़ा गर्मी होत हो, मतलब तरह तरह का बदलाव होत हो जौन हो ई मौसम में।
0: भाई मौसम जोन हो ये तो प्रकृति का नियम हो, है ना भाई। ओकरे हिसाब से कब गर्मी पड़ी, कब ठंडी पड़ी, कब बरखा हुई, ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करला। बाकी तो एक बात देखा वाली बा कि जोन गर्मी हो ना वो लगातार बढ़त चल जात हो। तापमान जोन हो दिन प्रतिदिन देखा जोन बढ़त चल जात हो, है ना, ये पर विचार करे के जरूरत हो, बुझल न।
1: विचार सुधु भैया, विचार का करे के हो, हमने के बड़ा सजग रहे के जरूरत हो।
0: बिल्कुल, तो विचार का मतलब यह भल कि ओकर कारण जाने के जरूरत हो कि आखिर ई काहे होत हो, आई कबले बढ़त चल जाई ऐसे। ऐसा तो ना हो कि जरा लगी। तो कहे का मतलब अगर सचेत हो जावे तो ये तापमान के नियंत्रित कैल जा सकला, बशर्ते प्रकृति का जो संतुलन का नियम हो बनावे का, अगर वो संतुलन बनल रहे है। और प्रकृति के तरफ से हमहन के दिखा जौन जीवन बदी सबसे ढेर उपयोगी चीज हो वो मुफ्त में मिलल हो, अपन जीवन। और
1: जीवन
0: जीवन
1: जीवन
0: के जिए बदे के हवा जो सांस वो मुफ्त में मिलल हो। सोच ल कि अगर खरीद के हवा हमहन के सांस लेवे के होत, जैसे हर महीना हमहन राशन नून तेल लकड़ी खरीदी ला, वैसे अगर गैस सांस लेवे वाली खरीदे के होत तो का हम तो जिंदा रह पाई का
1: नहीं
0: है।
1: भैया नहीं।
0: अरे भाई ये खेती किसानी में नहीं बल्कि बड़ बड़कवा भी हुआ ओहो न कह पौतन।
1: कोई न कर पावत हो। अरे प्रकृति हमने के बहुत अनमोल चीज देले हो,
0: तब
1: ओके कैसे हिफाजत से रखा के हो, कैसे ओकर ओके ग्रहण करे के हो, वो हमने के सोचे के पड़ी।
0: यह हमारे कहे का मतलब विचार करके यह रहल है कि अगर ये चीज हमें मिलल हो तो हमें ओकर जो है सम्मान करे के चाहिए, और ओकर उपयोग ऐसा करे के चाहिए कि ओकर कहीं से दुरुपयोग का संभावना न हो, और न दुरुपयोग करा, और लगातार मिलत रहे। खाली हम तो है नहीं बल्कि आवे वाली पीढ़ी के भी
1: पीढ़ी के
0: मिलत
1: भी
0: रहे,
1: मिला।
0: है
1: सुधु
0: ना।
1: भैया जिसे आप कहला है ना कि प्रकृति जोन दे लेन, तो इनकर संतुलन बना के रखे के जरूरत हो। यानी जोन जरूरी चीज हो जोने से कि प्रकृति का वातावरण शुद्ध रह सके, तो
0: बिल्कुल
1: वो चीज भी करे के जरूरत हो।
0: एकदम सही कहत हुआ। जो शुद्धता का बात कैला है ना, देखा भाई ये प्रकृति जौन हो इमन बहुत सा चीज है, बहुत सा गैस है जौन हम तू लेला उता ऑक्सीजन गैस हो भाई। एकरे अलावा भी बहुत सा गैस है जौन की विषैली भी है ना। अगर उनकर मात्रा बढ़ जाला है प्रकृति में तो ये तरह का असंतुलन होत हो, और वही की वजह से देखा जौन ओजोन परत हो अपने प्रकृति में।
1: हाँ।

0: ओजोन परत में विज्ञानी भैया लोग कहत हों कि छेदा हो गल हो, और ओकरे वजह से जौन सूर्य का किरण हो जौन उसे छन के आवे के चाहिए तो सीधी ये धरती पावत हो, जैसे कि जौन चमड़ी हमार तोहार झुलसत हो, पेड़ पौधा झुलस जात हुआ है, देखा था नया पौधा अगर लगा दे तो इस मौसम में लगी ना पाई,
1: नहीं सुधु
0: झुलस
1: भैया,
0: जात हो।
1: सुधु भैया जो पेड़ पौधा की बात कैला ना, देखा हो पहले हमने के बचपना में जौन हो वो हरियाली रहे, समय पे बरसात हो और पूरा वातावरण एकदम शुद्ध रहे, हर चीज एकदम सही रहल।
0: भाई समय पर होए कुल तो समय पर हमानो कुल काम करत रहली है ना, हिसाब किताब बैठाए के। अब तो भाई अगले बगले देखा अगर केहू पेड़ लगौले बा तो जाए के राति के मुरेर के चली आउत हूँ, और हरियर पेड़ अपने आवश्यकता बदे बड़ेरी बनाओ बदे काट देत हूँ है ना, कि झुरा ले तो बरखा के पहले जान हो मरम्मत जब करब ना खपड़ैल का तो वो बड़ेरी बदले के बा। तो कहे का मतलब कि जौन पेड़ हुआ ओके तो हम काटत चल जाते और नया लगावे के नाम पे कुछ ना करत है, वहाँ जौन हो बराबर कह के का करी है कि चौतरा बना दी है ना घर बना दी है रहे बदे के है ना, वो पेड़ गायब हो जाए। तो अब ये सोचा कि ये हवा कहाँ से आवत हो, भगवान के फैक्ट्री कहाँ लगल हो
1: सही
0: जहाँ से
1: बात।
0: ये हवा आवत हो, यह पेड़ पौधा उनका फैक्ट्री हो जानल ना भाई। कुछ पौधा ते मन ऐसा भी हुआ ना पेड़ जौन की 24 घंटा ऑक्सीजन देना जानल, उनकर बहुत महात्मा हो और यही वजह से देखा उनकर पूजा भी होले। देख
1: जैसे देखा सुधु भैया, हमने के पिछवाड़े के पीपल का पेड़ बा, अब बतावत थी कि कहीं हवा ना चलत, लेकिन जब वो पेड़े के लगे चल जाना तो हमेशा अगर पाती हिललत रहला, हवा चलत रहला।
0: बिल्कुल महसूस हुई और
1: हाँ
0: ठंडा
1: महसूस हुई,
0: महसूस हुई,
1: हाँ ठंडा
0: हवा
1: महसूस
0: लगे
1: हुई।
0: चाहे न लगे लेकिन ठंडा महसूस होला। आज देख ले पीपरे के जौन हो अपने घरे 3 लोग जौन हो जाए करके माई बहिन फेरी लगाए के नारा लपेट करके देखा पूजा कैनी है, आज कौन देखा लगा तो पर्व रहल है, देखलिए बड़ा भीड़ भाड़ रहा है ओकरे नीचे। तो यही वजह से कि देखा जे हमरे विषय में सोचा था हमें जीवन दान करत हो हवा प्रदान करत हो ऑक्सीजन देत हो वो हमरे बदे पूजनीय हो,
1: काहे
0: उन्हें
1: नहीं।
0: पूजा पाठ करके एक लोटिया जल चढ़ाए के नहिले के बाद देखा पहले ही परंपरा रहल है ना कि नहिले के बाद कुइयाँ से समझ ला एक लोटा जल ले जाए के पहले पिपरे में बरगद में चढ़ावें तुलसी जी में चढ़ावें और ओकरे बाद जौन हो अपन डोरी बल्टी लेके देखा कपड़ा लत्ता लेके घरे आवत जाए जल ना,
1: सुधु भैया देखा कला
0: यही
1: ना
0: वजह से।
1: जोन बात कैला है, देखा ये जोन हो तुलसी के पेड़ की बात कैला है, तो भाई मने ही सोचलन कि बड़ा पेड़ लगाए तो ओकर फल खा, ठीक है फल खा, छोटा पेड़ का भी बड़ा ओकर उत्तम उपयोग हो, ओकर बड़ा फायदा हो, जैसे तुलसी का हो ओकर भी औषधि फायदा हो, ओके भी लगाओ जरूरी हो।
0: ये देखा जेकरे पास जैसन जगह उपलब्ध बा वो हिसाब से वो पौधा लगा सकल है, खाली हम कही कि औषधि पौधा भल और चाहे तो तोरे इमारती पौधा भल है ना सजावटी पौधा भल कौनो तरह का पौधा अगर लगावत हुआ तो उसे लाभ है लाभ हो जानल। कुछ पौधा हुआ कि देखा घर के अगले बगले लगा दे तो मच्छर ना हो तो जानल, कुछ पौधा हुआ कि ऑक्सीजन ज़्यादा छोटे छोट रही हैं लेकिन ऑक्सीजन का उत्पादन उमन ज़्यादा मात्रा में
1: जैसे
0: होला।
1: नीबी के पेड़ हो गए, नीबी के पेड़ भी शीतलता रहला जो
0: नीम हो
1: इतना।
0: पीपर हो बरगद हो पाकड़ हो जल्ले
1: हाँ।
0: ये कुल पौधा देखा छाया देला ऑक्सीजन देला और एक नीचे चल जा ठंडा जाना तो बाइक कत्तो रास्ता अगर चलत हुआ तो ये होला कि तैसा छहाला ओकरे बाद
1: छाला
0: आगे जाए के मनवा ना करत हो
1: मनवा नहीं करता, सही बात है।
0: जल्ले ना। तो ये कीमत देखा ये समय समझ में आओ अपने
1: समझ में
0: पेड़
1: आवत
0: पौधा का।
1: है।
0: तो कहे का मतलब ये हो कुल का मूल बात ये हो कि देखा अब मौसम आवा वाला हो, अब वहीं से अगर गड्ढा खोद के तैयार कर ली है नीचे का माटी निकाल करके ओके फैला दी है तैसा सोनहा जाए है ना, फिर ओकरे बाद जब एक बरखा हो जाए तो भैया पेड़ लिया के बढ़िया से जहाँ जैसन जगह जेकरे पास
1: हाँ
0: उपलब्ध हो
1: हाँ
0: लगा लें है ना, और ओकरे बाद ओके जौन हो देखभाल भी करे के जरूरत हो जैसे एक छोटवा लड़का होना है ना, तो उन्हें भाई देखवार करे के होला कि भाई गिर न जाए पड़ न जाए, उन्हें कब भूख लगत हो कब प्यास लगत हो, तो ओके भाई नया पौधा के भी ओके जाली लगाए करके चाहे बासे के फरेटी से हो
1: बासे फरोटी से
0: है
1: गिर
0: ना
1: के। हाँ
0: ओके चाठे चारों ओरी गाड़ करके ओके जो है बढ़िया से ओके बांध दे वैसे जैसे कि बकरी उकरी भैल या कोनो गाय भैल भैंस भैल ओके चरे न पावे
1: चेहरे
0: है
1: न पावा
0: ना, और कोनो लड़का ओके खिलवाड़ में अगर निकाले भी चाहे नोचे चाहे तो न नोच पावे,
1: नहीं।
0: तो ओके समय समय पर पानी देत रहा। तो अगर ए तरह से तनिक ध्यान दे देबा तो ओकरे बाद जब वो बड़ा हुई ना तो तोहा नहीं बल्कि तुरे परिवार नहीं तोरे पूरे समझ ला कि खानदान को रक्षा
1: कई
0: करी
1: पीढ़ी के
0: कई
1: भैया।
0: पीढ़ी बदे हो जाई
1: हाँ
0: जल्ला ना।
1: अरे हमारे दादा का लगाव

0: बगीचा समझ ला हमने आम
1: आम तू
0: खाते,
1: खात हुआ,
0: आम खाते हम,
1: अब
0: और हम आई
1: बतावा।
0: नहीं हमार बच्चा भी खात हुआ।
1: सोचा तो भाई कहे का मतलब हो कि ए विषय पर सबके ध्यान देवे के जरूरत है, एकजुट हो के। तो हे जौन हो जितन भैया,
0: हाँ हाँ सुधो
1: हम
0: भैया
1: कहीं बत कहिए हो कि पंच भैया लोगन के कुछ सने सुनोई बा।
0: सुनवा दे भैया।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जितन भैया भाई
0: सुधु भैया
1: संदेश तो
0: देखा।
1: देखा, पंच
0: हाँ
1: भैया लोग सुन लेना। अब हम कही कि बत कही अपने पंचायती में जौन होना कुछ सुनवाई बा।
0: सुनवा दे भैया।
1: भाई देखा हो, हम लोग खेती बाड़ी के साथे साथे ना कोशिश यह रहला कि हर स्तर के जानकारी अपने पंच भैया लोगन के मिले,
0: मिले
1: जानला ना।
0: सही
1: कबो
0: बात।
1: कबो होला ना कि देखा हो खेती किसानी में कुछ यंत्र तंत्र का जब प्रयोग हमन करीला है ना, चारा मशीन भैल और चाहे ट्रैक्टर भैल है ना, तो उसी कभी कभी घटना दुर्घटना भी हो जाले, कुछ अंग जौन हो देखा भंग हो जाला। तो ओकर भी समझ ला कि कैसे इलाज कैल जाला है ना, कैसे ओके पूरा कैल जा सकला, जैसे कि आदमी अपन दिनचर्या काम कर सके। तो एके कहल जाला प्लास्टिक सर्जरी, जानला
0: अच्छा
1: ना। आज यही विषय पर अपने पंचायती में बत कही बा कि प्लास्टिक सर्जरी और एकर का उपयोगिता हो। डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह भैया बतियुले हुआ,
0: सुनवा दो
1: हम कहीं
0: भैया।
1: सुना जानकारी ला, पंच भैया भी सुना ध्यान से।
5: डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह, आप प्लास्टिक सर्जन हुए वाराणसी में। आज हम आपसे प्लास्टिक सर्जरी के संबंध में जानना चाहब, प्लास्टिक सर्जरी का हो और ये कितना उपयोगी हो।
6: देखिए, प्लास्टिक सर्जरी सर्जरी की एक ऐसी विधा है जिसमें जन्म से अगर कोई अंग प्रदान न किए गए हों या विकृत हों तो उनको हम ठीक कर लेते हैं, या चोट लगने से कोई अंग अगर नष्ट हो गए हों, शरीर का कोई भाग नष्ट हो गया हो तो हम उसको बना लेते हैं, या किसी बीमारी के कारण जैसे कैंसर इत्यादि के कारण कोई अंग अगर निकाल देना पड़ा हो तो हम उसकी भी पुनर्रचना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपने रंगों के अपने अंगों के आकार को सुडौल बनाना चाहता है तो कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा, जो कि प्लास्टिक सर्जरी का एक भाग है, उसको भी ठीक कर सकते हैं।
5: जी, तो ये प्लास्टिक कहाँ है, कहा जाला, कौन विशेष बात है इनमें?
6: प्लास्टिक शब्द ग्रीक शब्द से आया है, प्लास्टिकोस से आया है, जिसका अर्थ होता है आकार देना या रूप देना। इसका प्लास्टिक के साथ कोई संबंध नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का अर्थ होता है मांस को या खाल को इस्तेमाल करके नए आकार देना, नए रूप देना या बिगड़ी हुई चीज को बनाना। इसमें प्लास्टिक का जो जो प्लास्टिक की बोतलें होती है उस तरह का प्लास्टिक होता है, उससे कोई संबंध नहीं है।
5: जी, तो डॉक्टर साहब जैसे गांव में जो समस्या रहा था,
6: जी
5: तो कौन तरह की समस्या बाटे स्वास्थ्य के संबंधित जो है का प्लास्टिक सर्जरी से ठीक हो जाए?
6: लगभग सभी कुछ, जैसे जन्म के बाद अगर हम देखें तो जन्म में कई बार उंगलियां सटी होती हैं या हाथ की विकृतियां होती हैं, होठ तालू कटे होते हैं, कान नहीं बने होते हैं, या जननांगों की विकृतियां होती हैं, इस तरह की कई सारी विकृतियां होती हैं, या शरीर पे लाल काले भूरे दाग हो सकते हैं या सफेद दाग हो सकते हैं। इन सब चीजों का इलाज जो है प्लास्टिक सर्जरी द्वारा संभव है। दूसरा कि बहुत सारे दुर्घटनाएं हो जाती हैं गांव में, जैसे चारा काटने की मशीन से हो गई या खेती करते समय दुर्घटना हो गई या मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई जिसमें कोई अंग कट के अलग हो गए या नसें कट गई या हड्डी में बड़ी चोट आ गई और मांस खुला हुआ है, खून का संचार नहीं हो रहा है, तो इन सब का इलाज भी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा होता है। जलने की घटनाएं बहुत हो जाती हैं गांव में, तो जलने का इलाज भी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ही किया जाता है।
5: अच्छा, तो मान लिया अगर कोई एक तरह से दुर्घटना भय,
6: जी
5: कहीं आग लग गए, लोग
6: जी
5: जल जाते हैं,
6: जी
5: तो उनमें फिर क्या करें चाहिए पहले उनका?
6: देखिए, जलने के बाद चाहे कैसे भी जले हों, सबसे जरूरी पहली चीज जो करनी है वो ये कि पानी डाल के शरीर को ठंडा कर दें, और पानी डालने से जो खाल का तापमान है वो कम हो जाता है और उसके कारण जलने की गहराई कम हो जाती है। अब मान लीजिए कि कोई 60% जल गया है, उस पर अगर आप पानी डाल देंगे तो सेकंड डिग्री जला रहेगा, कम गहरा जला रहेगा, और पानी नहीं डालेंगे तो थर्ड डिग्री रह हो जाएगा, वो
5: मैं ज्यादा जल जाएगा,
6: ज्यादा गहरा जल जाएगा।
5: हाँ।
6: तो अगर सेकंड डिग्री है तो जान बच जाएगी और थर्ड डिग्री है तो जान नहीं बचेगी। ये अंतर
5: अच्छा।
6: केवल

0: लोग पानी डाल के कर
1: पहले
0: सकते
1: कुछ कहें कौन चीज बढ़ा दे उनका,
0: ना ना बढ़ाने से तो तापमान ज्यादा देर तक गर्म रहेगा।
1: हाँ।
0: तो जितनी जल्दी खाल ठीक हो ठंडी होगी उतना ही कम गहरा जलेगा। तो पानी डालना ही सबसे ज्यादा उचित है। मान लीजिए पानी नहीं है आपके पास और सामने कोई जल रहा है तो कंबल डाल के आग बुझा सकते हैं, लेकिन फिर तुरंत पानी डालना है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: अच्छा ओकरे बाद फिर उसका इलाज हुए, लेकिन हो थका इलाज में कि तमाम जोन बटे वो ऐसा वैसे सिलाई भय हो सिकुड़ जात पूरा चमड़ी
0: जी
1: और
0: जी
1: सफेद जैसे हो जात है
0: जी जी
1: और दाग भी में लागत काला काला
0: जी जी
1: तो फिर आगे हमें कैसे समाधान हो।
0: देखिए हम आपको पहले इससे ये बताना चाहते हैं, पानी के संबंध में एक और बात बता देना चाहते हैं।
1: जी
0: लोग बहुत भ्रांति है हमारे समाज में, गांव में विशेष करके, कि पानी मत डालिए उससे फफोला पड़ जाएगा। जबकि फफोला पड़ना अच्छी बात है, फफोला पड़ना कम गहरे जलने की निशानी है, तो पानी जरूर डालना चाहिए।
1: अच्छा
0: दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जलना एक गंभीर रोग है। भले ही एक उंगली ही क्यों ना जली हो, लेकिन जलना एक गंभीर रोग है और इसलिए उसकी मलहम पट्टी ना कराते रहें। तुरंत जाके किसी जलने के विषय के प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं, क्योंकि मान लीजिए एक भी उंगली जली है और उसके गहरे जलने के कारण वो सिकुड़ के टेढ़ी हो जा रही है तो हाथ से काम नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जो लोग केवल मलहम पट्टी से जलने का इलाज कराते रहते हैं, उनके हाथ में, चेहरे में, गले में या शरीर के किसी भी अंग में जहां पर भी जला हो वो सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है। एक तो घाव रहने के कारण, बहुत सारे इन्फेक्शन होने के कारण जान जाने का खतरा रहता है। दूसरे, उसके सिकुड़ जाने से पूरी विकृति हो जाती है शरीर में। आजकल जले हुए का इलाज बहुत आधुनिक हो गया है। जब हम देखते हैं कि गहरा जला हुआ है, अपने आप नहीं भरेगा, सिकुड़ के भरेगा, तो जलने के 3-4 दिन के अंदर ही उसको हटा के दूसरी खाल लगा देते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर अपनी खाल उपलब्ध नहीं हो तो स्किन बैंक से खाल लेके लगा देते हैं, और जो खाल कम गहरी जली होती है, जहां फफोले पड़े होते हैं, वो ड्रेसिंग मरहम पट्टी से ठीक हो जाते हैं, वहां सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कितना थोड़ा सा भी जला हो तो तुरंत किसी विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर ही इलाज कराना चाहिए, केवल मलहम पट्टी नहीं रखना चाहिए।
1: जी जी
0: दूसरी एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जले हुए घाव को खुला रखना है। ये बहुत ही गंभीर गलती है। किसी भी घाव को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, बल्कि मलहम लगा के और कॉटन बैंडेज लगा के, कीटाणु रहित बैंडेज लगा के पट्टी करके रखना चाहिए, उससे जल्दी ठीक होता है।
1: जी जी जी तो उसका इलाज जोन बाटे, मान ले कि वह समय ना करा पाए लोग, मलहम में पट्टी करत रहेंगे, घाव सूख गए
0: जी
1: और चमड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई होगी, सिकुड़ गए, तो बाद में का ठीक हो सका था?
0: बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभी मैं पिछले दो ऑपरेशन जो मैं करके आ रहा हूँ वो जलने से सिकुड़न उत्पन्न हुए ऑपरेशन ही मैं करके आ रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह के रोज कई ऑपरेशन मैं करता हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप जोन बाबे कहें कि स्किन बैंक भी रहते हैं, ये क्या चीज हो?
0: स्किन बैंक जो होता है, जो लोग मृत हो जाते हैं और अपनी स्किन को दान करना चाहते हैं, जैसे आई बैंक में कॉर्निया दान करते हैं, वैसे स्किन बैंक में स्किन भी दान कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: अब भारत में इस समय 15 के आसपास स्किन बैंक अलग अलग जगहों पर हो गए हैं, जहां पर लोग स्किन दान कर देते हैं। और ये दान की हुई स्किन जो है, जले हुए मरीजों में जिसमें कि गहरा जला हुआ है, उनकी जली हुई खाल को हटा के ये खाल लगाई जाती है, जो कि कुछ दिन तक काम करती है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद फिर अपनी ही खाल लगानी पड़ती है।
1: अच्छा अच्छा, तो ये बनारस में भी है बैंक कि नहीं?
0: बनारस में अभी स्किन बैंक नहीं बना है, लेकिन अगले 2 साल में एक स्किन बैंक बन जाने की उम्मीद है। और जलने की जो विकृति आप पूछ रहे थे, जलने की विकृति का इलाज प्लास्टिक सर्जरी द्वारा पूरी तरह से संभव है, और इसलिए तत्काल किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाके उसका इलाज करा लेना चाहिए।
1: जी अच्छा, जो दाग वगैरह रहते हैं शरीर पर, कभी कभी हो जाते हैं
0: वो दाग भी, जलने के बाद जो दाग हो जाते हैं,
1: हाँ।
0: उसका भी प्लास्टिक सर्जरी से बड़े ही आसान।
1: नहीं, जलना जलना तो ठीक हो,
0: जो सफेद दाग जो,
1: हाँ, वैसे हो जाते,
0: लिकोडर्मा जिसको बोलते हैं,
1: हाँ।
0: या विटिलिगो जिसको बोलते हैं,
1: हाँ।
0: वो दाग जो हैं, जब उनका घटना बढ़ना स्थिर हो जाता है,
1: हाँ।
0: और कम से कम 6 महीने तक स्थिर रहता है,
1: हाँ।
0: तब उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा के उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।
1: अच्छा, जो लक्षण उच्छन हो गया, बड़ा बड़ा काला काला,
0: सभी लक्षण जो काले हों, भूरे हों, बाल वाले हों, जैसे भी लक्षण हो, उन सब का इलाज जो है प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता है। और एक खास बात और है,
1: हाँ।
0: जो मस्से एक पेंसिल से ज्यादा चौड़े होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं या जिसमें कोई परिवर्तन होने लगेगी, कोई मस्सा है कई साल से अब उसमें लाल पन आ रहा है, उसमें खुजली हो रही है या खून

0: निकल रहा है, तो तत्काल जाके डॉक्टर को दिखा के उसको निकाल के जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। और कोई भी बड़े लक्षण जो शरीर में उपलब्ध हैं पहले से उसको भी निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार कैंसर जैसे परिवर्तन आ जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, वहीं आप कहें कि जो कुछ जन्मजात विकृत भी रहा थे,
0: जी
1: तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, जन्मजात विकृति जो हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो तो कटे होठ और कटे तालू। आप जानते हैं बनारस में दुनिया में सबसे ज्यादा कटे होठ कटे तालू का ऑपरेशन होता है। इसके अलावा कई बार हाथ की विकृतियां होती हैं, हाथ की उंगलियां जुड़ी हुई हैं या छोटी हैं, या हाथ टेढ़ा है, या कान जन्म से नहीं बना है, या मुंह मुंह जो है साइड से कटा हुआ है, या जननांग जो है लिंग जो है उसकी विकृतियां हैं, उसका छेद सही जगह नहीं है, या गोलियां सही जगह उतरी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी जन्मजात विकृतियां होती हैं जिनका इलाज प्लास्टिक सर्जरी द्वारा संभव है।
1: तो होठ कहाँ कट गया थे, का जन्म जन्म के समय ही कट गया थे?
0: जन्म से पूर्व जब जब चौथे सप्ताह से 12वें सप्ताह तक चेहरा बन रहा होता है तो दो साइड से आके जुड़ता है बीच में, तो उस समय अगर कोई ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जेनेटिक कारण से या वायुमंडलीय कारण से ऐसे हो जाते हैं, एनवायरमेंटल कारण से हो जाते हैं, तो वो जुड़ने से वंचित रह जाता है। तो ये सबसे जरूरी है कि गर्भवती होने से पहले माताएं ये ध्यान रखें कि पौष्टिक आहार लेके बिल्कुल स्वस्थ रहें, तब उसके बाद गर्भधारण करें, और गर्भधारण के दौरान कोई भी दवा बिना डॉक्टर से पूछे न लें और पोल्यूशन से बहुत दूर रहें।
1: तो का इलाज कैसे करते हैं फिर? तो गड्ढा हो गया था बिल्कुल
0: वो
1: होठ में,
0: होठ कट के दोनों तरफ हो जाता है, अलग अलग हो जाता
1: अलग
0: है।
1: हो
0: कई बार
1: गया।
0: तालू भी कटा होता है तो बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते।
1: अच्छा।
0: अब कई बार बच्चे लोग ये सोचते हैं कि जब ऑपरेशन करने की उम्र 3-4 महीने होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही पता चले कि बच्चे का होठ या तालू कटा हुआ है तुरंत आना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है कि बच्चा दूध ठीक से पी सके। तालू कटा होने पर बच्चा माँ का दूध खींच नहीं पाता है और उसमें 10 से 20% बच्चे कुपोषण का शिकार होके मर जाते हैं।
1: जी
0: जबकि अगर पहले आ जाएं तो हम लोग उन्हें ठीक से बता दें कि कैसे दूध पिलाना है, माँ भी अपना दूध पिला सकती है ऐसे बच्चों को। इसलिए तत्काल प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए ताकि दूध पिलाने के बारे में ठीक से बताया जा सके, ऑपरेशन तो बाद में होगा।
1: जी, मतलब हर तरह के जो भी विकृत बाटें शरीर में
0: जी
1: तो वो काफी हद तक ठीक हो जाती हैं प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और तत्काल प्लास्टिक सर्जन को संपर्क करना चाहिए। आजकल प्लास्टिक सर्जरी की विधा जो है बहुत उन्नत हो गई है, हर तरह की विकृति का इलाज इसमें संभव है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आज आप बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे हैं प्लास्टिक सर्जरी के संबंध में, और ये कितना उपयोगी हो एक बारे में भी आप बताएं। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुधु
1: जितन भैया,
2: भैया, सुधु भैया, बड़ा नीमन का जानकारी देना है डॉक्टर साहब।
3: भाई नगद के जानकारी देखा डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह से, दिनेश कुमार सिंह भैया देखा बतियोले रहना कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी होकर का उपयोगिता हो, है ना। कबो कबो दिखाओ बुढ़िया दादी रहे ना, कि जब ग्रहण लगे तो कह के हे देखा सब्जी मत काटा, तरकारी मत काटा, नहीं तो जन हो लड़िका को ओट कट जाये,
2: ओट कट
3: है ना। कबो कबो यो बात सुनने में आवाला, देखा वह डॉक्टर भैया बतावत हुआ कि ये तरह का अगर तालू या ओट कटल हो तो कर इलाज जो है माध्यम से
2: सर्जरी से
3: हो।
2: संभव हो।
3: पहले तो भाई ना ही इतना मेडिकल साइंस अपन तरक्की कैले रहा तो भाई वैसा जिंदगी बीत गई, है ना। तो हे देखा इस जानकारी के बाद तो हो गई नगद का, अब नगद का गौनाही भी हो जाए पंचायती में,
2: तब नगद का गौनाही करवा देती ना। देखा एक लोकगीत हो, देखा रेणु भारती का पूर्वी लोकगीत हो, आपो सुना पंच लोग भी
3: सुनवा दो, सुनवा दो।

0: सुधु भैया,
1: हाँ जीतन भैया,
0: अरे हमारे आँखी के नैनवा बड़ा सुंदर लोकगीत रहल है रेणु भारती का।
1: तो भाई गौनाई तो हो गई और काम के बात कही भी हो गई। अब हम कहें कि पंच भैया लोगन के काल का सुनवावत हुआ, वो भी बताए दो साथे साथे।
0: देखा अगले दिन के कार्यक्रम में जौन सवेरे 6:05 पर खेती के बाद एक कार्यक्रम होला, ओमन देखा विषय रही उर्वरकों की उपयोग क्षमता कैसे बढ़ावल जा, ये विषय पर जानकारी दीहन अपन दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: अच्छा, और सांझी के जो है ना बड़ा नगद का बत कही बा, बाकी तो हम बताई न तो हैं
0: चलो
1: जल्ला ना।
0: भैया हम सुन ले।
1: हाँ यही से कहा थी ना कि जब सुनबा तब ओकर कीमत समझ में आई जल्ला ना। और एक बात बा कि देखा भाई मौसम का मिजाज देखत हुआ जो शुरुआत में हमन बत कही कैली है और काम भी अपन कुल करही के बा, तो ऐसने में बचे के बहुत ज़्यादा जरूरत हो कि कपारे पर जो है खूब बढ़िया से पगड़ी उगड़ी बांध के जनला न तन ढक करके, कबो कबो देखने में आवला जो नायका लयकवा कुल हुआ न एन जौन हो फैशन में का करी है कि बिना बाही वाला भी कपड़ा पहन लेना जैसे गंजी के तरह, अकुल देह खुलल जल्ला कहा ना कि गर्मी लगत हो। और ओना ई ना समझ में आओ कि देह खुलल हो तो सीधे प्रकाश का जौन प्रभाव हो तोरे शरीर पर
0: सीधे ही
1: पड़त
0: पे
1: हो
0: जाई, देही पे जाई।
1: है ना। भाई इहो सावधानी एक ठे हो कि जौन कपड़ा पहने पूरा तन ढकल रहे जल ना, उसे भी बचाव हो जाला और साथे में साफ पानी लेके चले।
0: साफ पानी लेके चले भैया। और ये समय देखा ना बरसात आए वाला हो, तो भैया यही समय उमस दुनिया भर के जौन शरीर के जौन होला ना खुजली उजली सब बहुत
1: हाँ
0: तरह
1: तरह
0: के
1: तरह का
0: बीमारी।
1: दुष्प्रभाव देखा है
0: हाँ
1: समय
0: बीमार
1: हो जाला,
0: तो
1: तो हम
0: इससे
1: कहे
0: बचब
1: एक
0: जुए
1: साथे
0: थो।
1: चला के बेला हो तो पंच भैया
0: पंचो
1: लोगों से ज्ञा लेवल जाए। तो पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एतबार फिल्म से आवाज कुमार शानू सुजाता भट्टाचार्य की है।

एतवार फिल्म से ये गीत आपने सुना, जिसे आवाज दी थी कुमार शानू और सुजाता भट्टाचार्य ने। इस गीत को लिखा था नासिर फराज ने और इसे संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अपरिचित फिल्म से, आवाज उन्नी कृष्णन और हारिणी की है।

ये गीत आपने अपरिचित फिल्म से सुना। आवाज़ उन्नी कृष्णन और हारिणी की थी। गीत महबूब का लिखा हुआ था और संगीत निर्देशन हारिस जयराज का था। और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको बागी 2 फिल्म से सुनवा रहे हैं, जिसे आवाज़ दी है अंकित तिवारी और श्रुति पाठक ने।

बागी टू फिल्म से ये गीत आपने सुना, जिसे आवाज दी थी अंकित तिवारी और श्रुति पाठक ने। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीतबद्ध किया था गौरव रोशन ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार तनिषा कन्नौजिया पुत्री ब्रिजेश कुमार कन्नौजिया निवासिनी विश्वपालपुर थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर 1 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 16 वर्ष, इकहरा बदन, ऊंचाई 5 फीट, रंग गेहुआ, लंबा चेहरा और घटना के समय इन्होंने गुलाबी रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना जनपद जौनपुर को सूचित कर सकते हैं।

थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनीता पुत्री अनिल निवासिनी शिवपुर पोस्ट पन्नूगंज सोनभद्र 23 फरवरी 2026 से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 34 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच, इकहरा बदन रंग गोरा, चेहरा लंबा, आंखें काली और सामान्य, बालों का रंग भी काला है। घटना के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी और पैर में सैंडल पहन रखा था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने को है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और ख़ास तौर पे यहाँ एरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी

0: जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को हवा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
3: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालु जला किया। प्रवीण, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुख

0: फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

बैंड बाजा बारात इस फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज अमिताभ भट्टाचार्य और सलीम मर्चेंट की है। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत निर्देशन सलीम सुलेमानी का है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत आपने सुना के की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने और इसे सुरों में ढाला था प्रीतम ने। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बेवफा फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है सोनू निगम ने और इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

यू नफरत सेना कांटों को देखो काम आएंगे, फकत फूलों से है गुल, दोस्ती अच्छी नहीं होती।

बेवफा फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ सोनू निगम की थी। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बुलंदी फिल्म से, आवाज़ कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की है। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन विजू शाह का है।

बुलंदी फिल्म से ये गीत आपने सुना, कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था विजू शाह ने। और कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, चलते चलते फिल्म से, आवाज़ सुखविंदर सिंह की है, शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में ये गीत आपने सुना चलते चलते फिल्म से, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने और इसका संगीत तैयार किया था जतिन ललित ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न होता है। आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज के कलाकार हैं मनहर उदास और इनके साथ इनका साथ दिया है अनुराधा पौडवाल ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मनहर उदास की गाई चंद गजलें। आइए इन्हीं की गाई अगली गजल सुनते हैं। शायर हैं हस्ती माल हस्ती।

0: मनहर उदास की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। आज आप सुनेंगे इसकी कड़ी संख्या 15।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष

0: इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
1: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने भी इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
0: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
1: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाकर के दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मूड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजनाएं कर रहे हैं, बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे, ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
0: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
1: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से, अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी

0: व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई है, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान यह है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है, तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम है, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जो फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 1980 में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहाँ की दो भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कहें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि रूराम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी

0: कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता है तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करने केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत वन अमृत टू योजना चलाई, इसीलिए चलाई पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2,00,000 रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले उसी तरीके से वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का यूपीआई कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा है कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको एक घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली।

0: आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज लेने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोबा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है। और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में जी मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 सरकार द्वारा, भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे।

0: ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाया जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको ये लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है, वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। इंटरव्यूअर इज अनिल पद्मनाभन, सीनियर जर्नलिस्ट।
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy and rebuild trust between the state, enterprise and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade. Particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So, I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being

0: डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक

0: आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से

0: अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम

0: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. Friends City of Ovion gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी।

0: और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जाम शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैतिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया। यह माहदा भारत और स्लोवाकिया के दरमियान आमद रफ्त में मसरूफ काम करने वाले पेशावर अफराद की बहबूद और समाजी सलामती को तहफ्फुज फराहम करेगा। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि एआई का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि यह एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तावुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तय काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फिको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तावुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वफूद की सतह की बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 11 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें लेबर माइग्रेशन, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आला तालीम, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एक एआई चेयर का कयाम, क्वांटम मवासलात, तालिब इल्मों के प्रोग्राम में तआवुन और सेहत की फरोग के शोबे शामिल हैं। भारतीय कौमी साइंस एकेडमी और स्लोवाकिया की एकेडमी ऑफ साइंसेज के दरमियान साइंसी तआवुन से मुतालिक समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी और कौंसिल सतह के मुजाकरात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। नई दिल्ली से रूपेश राठौर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ब्रैतिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के सदर पीटर प्लेजरिनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। दौरे के दौरान दोनों लीडरों ने पंचतंत्र फोटो नुमाइश देखने से कबल महल के ग्राउंड में योगा का एक खसूसी मुजाहरा देखा। महल के बाहर भारतीय नजाद अफराद की बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। फ्रांस के सदर

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन।

मिताली सिंह के स्वर में ये गज़ल आपने सुनी, और अगली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं आबिदा परवीन की आवाज़ में। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।

हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। आइए अगली गज़ल सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में।

बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो हमसे मिल ले तो प्यासा ही लौट जाए। आइए अगली गजल सुनते हैं चंदन दास की आवाज में।

कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह खुद बनाता है। चंदन दास की गाई इसी गजल के साथ अंजुमन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं परिचर्चा जिसका विषय है आकाशवाणी के 90 वर्ष हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र, नरेंद्र आचार्य, डॉक्टर राम सुधार सिंह और प्रोफेसर निरंजन सहाय।
1: श्रोताओं नमस्कार।
2: बाबा विश्वनाथ की नगरी और गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस से आकाशवाणी वाराणसी केंद्र पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, आकाशवाणी के 90 वर्ष हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान इस परिचर्चा का संचालन कर रहा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। विषय है आकाशवाणी के 90 वर्ष हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान। आज हमारे साथ इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं अपने फन के उस्ताद विद्वान नरेंद्र आचार्य जी। आप दूरदर्शन के साथ लंबे सफर रहे हैं, आप पूर्व केंद्र निदेशक वाराणसी भी रहे हैं। नरेंद्र आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: हमारे साथ दूसरे साथी हैं डॉक्टर राम

0: सुधार सिंह, आप प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। वाराणसी के साहित्यिक हलके में आपका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। डॉक्टर राम सुधार सिंह सर का बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे साथ परिचर्चा में एक और बेहतरीन व्यक्तित्व साथ हैं, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र। आप विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय।
1: बहुत बहुत आभार आपका।
0: मित्रों, तस्वीरें सिर्फ आंखों को मानती है, लेकिन आवाज सीधे रूह में उतर जाती है। हवा की लहरों पर तैरती हुई यही आवाज जब खबरों, भावनाओं और संवेदनाओं का रूप लेती है तो वह जन जन की जुबान बन जाती है। आज की यह विशेष परिचर्चा इतिहास के एक ऐसे खूबसूरत पड़ाव पर आयोजित है क्योंकि हमारी पुरानी साथी, सुख दुख की हमराही और भरोसे की पहचान आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर चुकी है। 90 वर्षों की यह यात्रा केवल समाचार प्रसारण की यात्रा नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास की यात्रा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के उद्देश्य के साथ शुरू हुई यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक और विश्वसनीय है। देवियों और सज्जनों, जब तकनीक अपने शुरुआती दौर में थी और दुनिया दूरियों में बटी हुई थी, तब हवा की लहरों पर तैरती एक आवाज ने दिलों को जोड़ने का काम किया। वह आवाज थी आकाशवाणी। गीतकार गुलजार साहब की पंक्तियां इस परिचर्चा का सबसे सटीक आधार बुनती है। नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। रेडियो के पीछे बैठे कलाकार का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज करोड़ों दिलों के दिलों में स्थायी पहचान बना लेती है। आज की हमारी परिचर्चा इसी आवाज के जादू, हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास, सामाजिक प्रभाव और बदलते स्वरूप पर केंद्रित है। श्रोताओं, आज हम सूचना क्रांति के दौर में जी रहे हैं। चारों ओर दृश्य माध्यमों की भरमार है, लेकिन बिना चेहरे की यह आवाज आज भी अपनी विश्वसनीयता और आत्मीयता के कारण लोगों के दिलों में बसी हुई है। आकाशवाणी ने केवल खबरें नहीं सुनाई, बल्कि भाषा को संस्कार दिया, समाज को दिशा दी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी भाषा के लोकतांत्रिकरण से लेकर मानक हिंदी के विकास तक, अखबारी पत्रकारिता से ध्वनि पत्रकारिता तक, लोक शिक्षा से साहित्यिक चेतना तक और आपदाओं में लाइफलाइन पत्रकारिता से लेकर आज के डिजिटल पुनराविष्कार तक, आकाशवाणी की यात्रा भारतीय जनजीवन की यात्रा रही। इस माध्यम ने कभी चीख पुकार का सहारा नहीं लिया, इसकी भाषा में हमेशा तहजीब, संतुलन और सलीका रहा है। मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर याद आ रहा है, हैं और भी दुनिया में सुखन भर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। ठीक इसी तरह आज भी आकाशवाणी का अंदाज बयां सबसे अलग और सबसे भरोसेमंद माना जाता है। आज इसी अंदाज बयां, इसकी चुनौतियों और इसके भविष्य पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के प्रतिष्ठित मीडिया विशेषज्ञ, वरिष्ठ विद्वान और प्रबुद्ध विचारक। आप सभी अतिथियों का इस केंद्र पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब देश में टीवी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तब अखबारों के बाद देश दुनिया को जानने का सबसे विश्वसनीय माध्यम आकाशवाणी ही था। मैं नरेंद्र आचार्य जी से जानना चाहूँगा कि आकाशवाणी के इतिहास की कहानी किस नज़र से हम देख सकते हैं।
2: धन्यवाद। आज का जो विषय है कि आकाशवाणी का योगदान हिंदी पत्रकारिता के लिए, तो ये योगदान 90 वर्ष हुए हैं और 90 वर्ष से सतत चल रहा है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े देता हूँ, अपनी बात उससे स्पष्ट हो जाएगी। वर्ष 1939 और 1940 में 27 न्यूज बुलेटिन
1: जी
2: उस समय, और इस समय 510 न्यूज बुलेटिन चलते हैं आकाशवाणी के, और ये 510 बुलेटिन 42 भाषाओं बोली में और लगभग प्रतिदिन 52 घंटा हम समाचार प्रसारित करते हैं। समाचार में समाचार, समाचार समीक्षा, सामयिकी जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। केवल दिल्ली से आज की तारीख में 89 बुलेटिन आकाशवाणी प्रसारित करती है समाचारों के। अब देखिए, हर जगह रीजनल न्यूज यूनिट बनाई गई आकाशवाणी की, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में RNU बोलते हैं, प्रादेशिक समाचार एकांश। ये इस समय 46 है पूरे देश में, और 67 भाषाओं में या बोलियों में, भाषा और बोली को एक साथ में रख दे रहा हूँ, भाषाओं या बोली में प्रतिदिन 355 बुलेटिन प्रसारित हो रही है। इसके अलावा 42 आकाशवाणी।

0: केंद्रों से एफएम गोल्ड पर भी समाचार का बुलेटिन शुरू हो चुका है। अच्छा, ये तो वे ठोस समाचार सॉलिड, लेकिन समाचारों के अतिरिक्त प्रतिदिन समाचार समीक्षा के अलग से अनेक कार्यक्रम आते हैं, जैसे न्यूज दिस वीक, सामयिकी, इस तरह से बहुत से हैं। अब आप सोचेंगे कि पहला समाचार बुलेटिन, हिंदी का पहला समाचार बुलेटिन बॉम्बे, अभी तो मुंबई बोलते हैं, उस समय बॉम्बे था, हिंदी का पहला समाचार बुलेटिन बॉम्बे केंद्र से 23 जुलाई 1927 को प्रसारित हुआ था, और उसके ठीक एक महीने बाद कलकत्ता से, अब वो कोलकाता हो गया है, कलकत्ता से बांग्ला में बुलेटिन शुरू हुआ था, वो था 26 अगस्त 1927। 1935 तक बॉम्बे से 2 बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदुस्तानी में, और कलकत्ता से 1 बुलेटिन बांग्ला में, ये प्रसारित हो रहा था। तो ये तो छोटा मोटा इतिहास है कि किस तरह से समाचार आकाशवाणी बढ़ा रही है, फैला रही है।
1: बहुत सुंदर आचार्य जी, आपने आकाशवाणी की यात्रा पर जो विहंगम दृष्टि डाली है, उससे हम सभी लाभान्वित हुए। श्रोताओं, आज़ादी के आंदोलन से लेकर सीमाओं पर युद्ध के समय तक आकाशवाणी ने देश के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया। लोग समाचार सुनने के लिए रेडियो के आसपास एकत्र हो जाते थे। देवकी नंदन पांडेय जैसे समाचार वाचकों की आवाज़ इतनी लोकप्रिय थी कि लोग अपनी घड़ियां उनके समाचारों के समय से मिलाते थे। हमारे साथ प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र जी हैं, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हिंदी श्रव्य पत्रकारिता की वह कौन सी विशेषता थी जिसने आकाशवाणी को जनता का सबसे अटूट भरोसे का साथी बनाया?
2: बहुत प्रासंगिक ये विषय है। देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि आकाशवाणी का से जो समाचार लोगों तक पहुंचते थे वो बड़े सहज थे, बड़े सरल थे, बड़े सुगम थे, और बहुत आसानी से बातें लोगों के समझ में आ जाती थी। अभी क्या है कि जो टेलीविज़न और बाकी चैनलों पे जो समाचार आते हैं और आकाशवाणी की के जो समाचार होते हैं, उनमें बहुत अंतर है। जो गंभीरता होनी चाहिए, जो प्रामाणिकता होनी चाहिए, वो चैनलों में नहीं है
1: जी।
2: जबकि आकाशवाणी में वो प्रामाणिकता अभी भी दिखाई दे रही है और पहले भी थी। जब मुझे याद है हम लोग छोटे थे बचपन के दिनों में, तो देखते थे, गांव में हम लोग रहते थे, तो एक किसी गांव के किसी एक कोने में 8 बजते बजते जब बुलेटिन आना शुरू होता था तो लोगों की नज़रें उधर लग जाती थी। ये बात सच भी है कि समय का अंदाज़ा भी वो समाचार से ही लोग लगाते। यहाँ तक कि विद्यार्थी जब स्कूल जाना चाहता था तो वो जो समाचार आता था उसके हिसाब से ही वो सोचता था कि अब मुझे तैयार होना है। और सब मिला के अगर कुल कहा जाए, लब्बो लुआब, तो आकाशवाणी निश्चित रूप से एक सहज, सौम्य और प्रामाणिक समाचार देने का माध्यम रही है
1: जी। बहुत सुंदर। दरअसल आकाशवाणी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विश्वसनीयता ही रही है। यह माध्यम सनसनी से दूर रहकर तथ्यों, संतुलन और भाषा की मर्यादा के साथ आगे बढ़ा। नरेश सक्सेना की एक कविता है कि दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वे चाट जाती हैं पूरी की पूरी किताब। साथियों, किताब की जो भाषा होती है, कई बार उसे समझना दुरूह होता है, टेढ़ी खीर होती है। आपने सुना है आकाशवाणी को, उसकी आवाज़ ही उसकी ताकत है, यानी आकाशवाणी ने भाषा के साथ भी भाषा के संस्कार को बनाने में महती भूमिका निभाई है। सरल और सहज हिंदी ने गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी आकाशवाणी की जगह को मुकम्मल किया है। मैं राम सुधार सर से जानना चाहता हूं, आप वाराणसी के बड़े साहित्यकार हैं, आप बताएं कि गैर हिंदी इलाकों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने और मानक हिंदी के विकास में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही?
3: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात एक संस्मरण से करना चाहता हूं, और बचपन के संस्मरण से करना चाहता हूं। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके पहले मैं सुदूर गांव का रहने वाला था और मैंने रेडियो नहीं देखा था, रेडियो मैंने सुना भी नहीं कभी था, और मेरे पूरे गांव में रेडियो नहीं थी। तो उस समय मेरे पिताजी ने बाहर से, वो कलकत्ता से, एक रेडियो भेजा। तो उस दिन मैं स्कूल नहीं गया कि मेरे भाई साहब रेडियो लेके आ रहे हैं, और इतना बड़ा मैंने ग्रामोफोन देखा था जो बड़े बड़े बजते थे शादी विवाह में, तो मुझे लगा कि कई लोग उठा करके ले आएंगे। तो मेरे भाई साहब ने एक मर्फी रेडियो अपनी कांख में दबा करके वो बस से उतरे। तो जब वो रेडियो बजती थी 8 बजे के 9 बजे का जब समाचार आता था, और चीन और भारत के युद्ध की बिल्कुल आंखों देखी रिपोर्टिंग जब वो उससे आती थी, तो पूरा गांव चारपाइयां फैल जाती थी और पूरा गांव उसको सुनता था। पहली

0: बार मैंने सुना, रेडियो से आवाज
1: बहुत
0: सुना,
1: सुंदर।
0: और यह आश्चर्य होता था कि इस छोटे से बक्से के भीतर उस बाल मन के अंदर आया कि ढोलक कैसे बज रही है, झाल कैसे बज रही है, हारमोनियम कैसे बज रही है। तो जो रेडियो की यह यात्रा है, यह इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से लेकर के ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी तक की गौरवशाली जो 90 वर्ष की यात्रा जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसने हिंदी भाषा का एक लोकतांत्रिक का एक मानक रूप प्रस्तुत किया है। बड़ी चुनौती है रेडियो के साथ और जो लोग समाचार संपादन करते हैं या समाचार वाचन करते हैं, एक ऐसी भाषा की जरूरत है क्योंकि रेडियो केवल पढ़े लिखे लोगों तक नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा जो निरक्षर लोग थे, जो अपढ़ लोग थे, जो गांव के किसान थे, दूर दराज के लोग थे जिनके शिक्षा नहीं पहुंची थी, उन लोगों तक रेडियो की आवाज पहुंची। तो एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो कि सबकी समझ में आ जाए, जो तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ भाषा भी न हो, उर्दू प्रधान भाषा भी न हो, लेकिन उसका मानकीकरण भी बना रहे। तो ऐसी भाषा की जरूरत थी और उस भाषा को रेडियो ने बखूबी निभाया। यह रेडियो का मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा योगदान है, एक ऐसी भाषा देना। यह भारतेंदु का शहर है, शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद का शहर है, राजा लक्ष्मण सिंह का शहर है। ऐसे समय में जब भाषा का स्वरूप निर्मित हो रहा था और फिर छायावाद ने, साहित्य ने भाषा का जो स्वरूप दिया, उस स्वरूप में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। और बड़े साहित्यकार इससे जुड़े रहे, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि अज्ञेय जी, सुमित्रानंदन पंत और बहुत सारे लोग, अस्क जी जुड़े रहे इससे जो है, और नरेंद्र जी इससे जुड़े रहे हैं। इन लोगों ने मिल करके भाषा का वह स्वरूप स्थापित किया होगा जिस पर हम गर्व कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। वक्त बदला, तकनीक बदली, शॉर्ट वेव के लड़खड़ाते रेडियो से शुरू हुआ सफर एफएम की साफ आवाज तक पहुंचा और आज मोबाइल एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस तकनीकी बदलाव के बीच भी आकाशवाणी ने अपनी आत्मा को जीवित रखा है। ज्ञानवाणी, कृषि दर्शन, युववाणी जैसे कार्यक्रमों ने शिक्षा और जन जागरण को नई दिशा दी। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी मिली, युवाओं को नई सोच मिली और साहित्य को नई अभिव्यक्ति भी। रेडियो नाटक, कवि सम्मेलन और कहानी पाठ ने हिंदी साहित्य के साथ साथ भारतीय साहित्य को घर घर तक पहुंचाया। तकनीक के इस बड़े बदलाव के बीच आकाशवाणी ने स्वयं को किस प्रकार ढाला, मैं आचार्य जी से जानना चाहता हूँ। आपसे यह भी समझना चाहता हूँ कि आज डिजिटल माध्यमों पर इसकी उपस्थिति को आप किस रूप में देखते हैं।
2: जी देखिए, ऐसा है कि इस समय आकाशवाणी की जो पहुंच है वो 98% आबादी तक है, और जो हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र है वो 92% तक आकाशवाणी आराम से पहुंच जा रही है। इस समय हमारी विदेश प्रसारण सेवा भी है जो समाचार भी देती है,
1: जी।
2: इसकी पहुंच 100 से अधिक देशों तक है। तो ये आकाशवाणी की पहुंच बहुत व्यापक है। अभी 23 भाषा, 146 बोलियाँ ये आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे हैं, इन जगह प्रसारित हो रहा है। जहाँ तक आपने तकनीक की बात की, तो आकाशवाणी हमेशा से तकनीक के साथ रहा है, हमेशा से रहा है। पहले जब था एएम था, एएम के बाद धीरे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम आया, तो आकाशवाणी ने उसको एफएम में ले लिया। इसके बाद जब डिजिटल की बात जो आपने कही, जब डिजिटल आई, तो इस समय आकाशवाणी का एक ऐप है, न्यूज ऑन एयर।
1: जी जी,
2: हाँ, ये
1: जी।
2: आप याद रखिए, ये श्रोताओं को भी याद रखना चाहिए कि ये कितना अच्छा है। आप अपने किसी मोबाइल में न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी केंद्र का कोई भी कार्यक्रम सुन सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
2: हमारे बहुत से, मेरे बहुत से मित्र बीकानेर में हैं, मैं आपको किस्सा बताता हूँ।
1: बिल्कुल,
2: तो बीकानेर से उनका फोन आता है कि आज रात को मेरा नाटक इतने बजे आने वाला है, तो मैं यहीं बैठ करके वो नाटक सुन लेता हूँ। और भी केंद्रों में जो मित्र हैं मेरे, वो भेजते हैं लिख करके कि आज इतने बजे सुनना। तो ये ऐप इतना अच्छा है कि इससे हम लोग सुन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी अभी जो बिल्कुल वेब्स ओटी शुरू हुआ है, ये आकाश प्रसाद भारती का वेब्स, जैसे ओटीटी और लोग के हैं उसमें, उस वेब्स में भी जो है आप न्यूज़ समाचार आकाशवाणी के सारे केंद्र सुन सकते हैं। इसके अलावा जो डीटीएच है, वो दूरदर्शन का डीटीएच फ्री वाला है, उसमें आकाशवाणी के सारे चैनल, आप आकाशवाणी चैनल ट्यून करके आप सुन सकते हैं। तो ये आकाशवाणी हमेशा समय के साथ आगे बढ़ती रही है, चलती रही है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तो एक नई और निराली दुनिया से हमारे श्रोताओं को परिचय कराया। श्रोताओं, याद रखिए, आकाश

0: ऑन एयर भी सुनिए और
1: हाँ
0: किसी इलाके में रहिए, अपने इलाके से जुड़े रहिए, उससे अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। आज पॉडकास्ट और ऑडियो प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच रेडियो एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ हमारे सामने आया है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मन की बात इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसने श्रव्य पत्रकारिता को फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। मैं जानना चाहूंगा प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र जी से कि आम जनता और रेडियो के इस नए जुड़ाव को आप किस रूप में देखते हैं?
1: बहुत प्रासंगिक विषय है। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी बच्चों से जहाँ संवाद करता हूँ, ये प्रश्न मेरा पहला होता है कि आज के इस तकनीकी दौर में जहाँ भी पर लाइव प्रसारण का बड़ा महत्व है, ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री जी को मन की बात करने की क्या आवश्यकता हुई, वो भी रेडियो पर। क्योंकि रेडियो से अच्छा था कि टेलीविजन पे वो बोलते, बाकी होता
0: जी
1: तो। और ये भी मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ये बताओ कि ये पहला ऐसा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का जिस पर कि वो रेडियो पर बोलते हैं और टेलीविजन उसका लाइव प्रसारण करता है। तो रेडियो पर बोलना और टेलीविजन पर उसका लाइव प्रसारण होना, ये अपने आप में दुनिया का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है, और वो भी आकाशवाणी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जो जन जन तक पहुंचता है। और गांव में रहने वाला, सुदूर जंगलों में रहने वाले ऐसे आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में भी मैं गया हूं और मैंने देखा, जैसे सोनभद्र के इलाके हैं या आज भी जो बहुत पिछड़े इलाके
0: जी
1: हैं, वहां आपको रेडियो भी मिलेगी। मोबाइल पे तो सुनते ही सुन ही सकते हैं, लेकिन रेडियो पर भी वो सुनते हैं। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, जो मन की बात के द्वारा पहुंची हैं, उससे बड़ा लाभ हुआ है। और आपको एक चीज और भी मैं बता दूं कि लगभग इस देश में विशेषकर हिंदी पत्रकारिता या हिंदी को लेकर के आकाशवाणी ने बहुत बड़ा काम किया है। जैसे एक देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता ने लोगों को हिंदी के प्रति उत्साहित किया और
0: जी
1: लाखों लोगों ने हिंदी सीखा, वैसे ही आकाशवाणी का जो हिंदी के कार्यक्रम है, जो फिल्मी गीत है, बाकी जो समाचार है, जो बाकी नाटक और नौटंकी और उसके अलावा प्रहसन, और सबसे बड़ी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते खेती किसानी जो कार्यक्रम आता है
0: जी
1: आकाशवाणी का, वो बिल्कुल अलग है। और वो उससे किसान भाई तो बहुत लाभान्वित होते हैं। मुझे याद है, फिर वो मैं अपने बचपन की बात बताऊं कि मैंने बहुत ऐसी चीजें, जैसे आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ में इतनी दुनिया भर की साइंस और टेक्नोलॉजी हो गई है, दूरदर्शन और बाकी सब हो गया है, लेकिन गांव में रहने वाला जो किसान है, उसका आम का पेड़ झुलस रहा है, उसमें कीड़े लग रहे हैं, उनके जो धान की खेती है वो बाधित हो
0: मुरझाए
1: रही है। सबके बावजूद रेडियो के माध्यम से जो खेती बाड़ी किसानी का जो कार्यक्रम था, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, लाखों लाख लोगों को फायदा हुआ है। तो ये सहजता और ये जो चीजें थी वो रेडियो से ही प्राप्त हो सकती हैं। वो आज के पॉडकास्ट के युग में सबके बावजूद और सोशल मीडिया के इस युग में जो रेडियो की जो प्रासंगिकता है, वो पहले से कई, मैं तो कहीं कहूंगा कि कई 100 गुना बढ़ी है, और हर व्यक्ति सुनना चाहता है रेडियो को।
0: ज्ञान प्रकाश जी, आपने पूरी बातचीत को एक नया आयाम दे दिया। फर्जी खबरों की जांच पड़ताल की ओर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, आज सोशल मीडिया के दौर में सूचनाओं की बाढ़ है। फर्जी खबरें, शोर और तेज प्रतिस्पर्धा के बीच विश्वसनीयता पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। लेकिन इन सब के बीच आकाशवाणी आज भी अपनी सादगी और सच्चाई के कारण अलग पहचान रखती है। मैं राम सुधार जी से जानना चाहूंगा, इस शोर और फेक न्यूज के दौर में आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता कैसे बनाए हुए है?
2: यह विशेषता आकाशवाणी की सर्वप्रथम विशेषता, सर्वप्रमुख विशेषता है। मैंने कहीं पढ़ा है, एक फिर संस्मरण की बात नहीं करूंगा, मैंने कहीं पढ़ा है कि एक बार रूस के राष्ट्राध्यक्ष क्रुश्चेव को कहीं दूर देश की यात्रा करनी थी, और वह जब हवाई जहाज में बैठने के लिए गए वहां, तो उनको ध्यान आया कि मेरा पैंट फटा हुआ है।
0: जी
2: तो उनको बड़ी चिंता हुई कि पैंट फटा हुआ है, दूसरे देश की यात्रा करने जा रहा हूं। तो थोड़ी देर में देख रहे हैं कि उनके ऑफिस का एक स्टाफ नया पैंट लेकर के आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी पैंट फटी हुई है? तो उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि रेडियो ने इस न्यूज को पूरी दुनिया में फैला दिया है कि उनका पेंट फटा हुआ है।

0: समय लेकर के
1: जी जी तो बिना बिना कागज के और बिना समय के त्वरित समाचार प्रेषित करना और विश्वसनीय समाचार प्रेषित करना, यह सबसे बड़ी विशेषता रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भाषा का एक मानक रूप रखा और समाचार की विश्वसनीयता, आजकल जिस तरह से टीवी के तमाम चैनल्स वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे किसी के चरित्र हनन को लेकर के लेकर के है, तो उसमें तमाम तरह की फेक न्यूज एक शोर भरा हुआ है। उसमें अगर पुरानी पीढ़ी के लोग, और तो मैं देखता हूँ कि नए लड़के, अगर उनको कोई विश्वसनीय समाचार जानना है तो वो रेडियो के पास आते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। और रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पिछले बार भी आपने इस प्रश्न की तरफ संकेत दिलाया था कि जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, मुझे याद है कि मैं सुदूर दक्षिण के गाँव में मैंने यात्रा किया है और मैंने देखा है कि वहाँ का व्यक्ति, फिल्मी गानों का बहुत बड़ा महत्व है हिंदी के प्रचार प्रसार में, वहाँ का व्यक्ति हिंदी बोलता नहीं है, समझना नहीं चाहता है, लेकिन वह गाना सुन रहा है तो रफ़ी और लता मंगेशकर का गाना सुन रहा है। तो रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है कि सुदूर, जैसे सर ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्रों में वहाँ जाते हैं। और आजकल सचमुच एक समाचार की आंधी फैली हुई है, किस पर हम विश्वास करें? एक चैनल को देखिए तो लगेगा कि सरकार बिल्कुल सही कर रही है, दूसरे चैनल को देखिए तो लगेगा कि सरकार बिल्कुल बकवास कर रही है। और ऐसे में, ऐसे भूल भुलैया के दौर में अगर कोई समाधान प्रस्तुत करता है तो वह समाधान है रेडियो। रेडियो ने अपनी इस यात्रा में, संकट के दौर में, आज तमाम तरह के टीवी, एक लोग मान रहे हैं कि दूरदर्शन के कारण और टीवी के इन चैनल्स के कारण रेडियो पर संकट है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा का मानक रूप और उसकी विविधता, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग कार्यक्रम बना करके रेडियो जिस तरह से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर रही है, हर वर्ग उसमें शामिल हो रहा है और उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। पूरे दिन भर आप विभिन्न चैनल को देखते रहिए और 15 मिनट आकाशवाणी का समाचार सुन लीजिए, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। जहां खेल भी है, जहां दिन भर की घटनाएं भी हैं, जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी है, जहां दिल्ली की लोकसभा भी है, पूर्णता के साथ।
2: श्रोताओं, घड़ी की सुई याद दिला रही है कि हमें इस कार्यक्रम को समेटने का भी संकेत मिल रहा है। मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल की तरफ आचार्य जी से चाहता हूं कि मैं मुखातिब हूं। राम सुधार जी ने बिल्कुल सही बात कही कि शोर शराबे के दौर में सादगी रेडियो की पहचान है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, अरे जो लब सादा रहने दो, ताजमहल पे रंग न डालो। मैं जानना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी को आकाशवाणी के इस खजाने से जोड़ने के लिए जो आकाशवाणी से जुड़े लोग हैं, उनको अपनी प्रस्तुति शैली में क्या बदलाव लाने होंगे? आचार्य जी से बड़े संक्षिप्त में बताइएगा।
3: देखिए, मैं जल्दी जल्दी एक बात बताऊं, ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि रेडियो अब कोई नहीं सुनता
2: जी।
3: इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। अभी लगातार इसके सर्वे होते रहते हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें हुआ कि 85% लोग कार चलाते समय रेडियो सुनते ही सुनते हैं। उनको और टाइम था, वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव में चले जाते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं। यूके में बीबीसी ने बीबीसी राउंड ऐप एक लागू किया है अभी अभी। बीबीसी राउंड ऐप में आप उसको लगातार सुनते हैं, उसको 89% लोग उसको सुनते रहते हैं। नॉर्वे में 1917 में ही FM नेटवर्क ख़त्म कर दिया और उन्होंने डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग DAB जिसको बोलते हैं, वो चालू कर दिया है, जिसको लगातार लोग सुनते हैं और जिसमें कि पैसे का खर्च भी प्रसारण में बहुत ही कम होता है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। मैं इसका बिल्कुल विरोध हूँ कि आकाशवाणी में कोई परिवर्तन होना चाहिए
2: जी।
3: आकाशवाणी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आप जो प्राइवेट FM चैनल्स आ गए हैं उसको कभी फॉलो मत कीजिए। विविध भारती हमारा सारे प्राइवेट FM चैनल से ज़्यादा सुना जाता है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। हमको RJ बनने की जरूरत नहीं, हमको उद्घोषक ही बने रहने दीजिए।
2: प्रस्तुति शैली की जो मारक और बेहतरीन व्यवस्था आकाशवाणी के पास है, उसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया। हम शुक्रगुजार हैं, आप सभी विद्वान साथियों के आभारी हैं। श्रोताओं, आज आपने नरेंद्र आचार्य, श्रोताओं आकाशवाणी के 90 वर्ष की यह यात्रा हमें सिखाती है कि माध्यम चाहे पुराना ट्रांजिस्टर हो या आज का स्मार्टफोन, आकाशवाणी की आत्मा हमेशा उसकी विश्वसनीयता

0: संवेदनशीलता और जनसेवा में बसी रही है। यह केवल एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि भारत की भाषा, संस्कृति, साहित्य और लोकतांत्रिक चेतना की आवाज है। बनारस की इस मिट्टी की तरह ही रेडियो की आवाज में जो सोधापन है, वह हमेशा दिलों को महकाता रहेगा। मैं चलते चलते आप सभी विद्वानों से एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ समापन करना चाहूंगा। आकाशवाणी और पत्रकारिता और आवाज की इस दुनिया के रिश्ते को आप किस रूप में देखना चाहेंगे, नरेंद्र आचार्य जी, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी और प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र जी?
1: मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको हिंदी भाषा का संस्कार लेना है तो आप आकाशवाणी का हिंदी न्यूज़ बुलेटिन जरूर सुनिए। बचपन में मेरे पिताजी ने जो मुझे हिंदी सिखाने के लिए ये कहा कि तुम आकाशवाणी का समाचार सुना करो। आकाशवाणी का समाचार सुबह का, शाम का, जब आपको समय मिले सुनिए, आपका भाषा का संस्कार अपने आप हो जाएगा।
0: ज्ञान प्रकाश मिश्र जी,
2: देखिए, आकाशवाणी की प्रासंगिकता को अगर देखें और आज आज भी उसकी महत्ता को हम समझेंगे तो आप पीछे स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के और आज तक का एक अवलोकन करना पड़ेगा, साहित्य, संगीत, कला से लेकर के, और जो एक सांस्कृतिक प्रेम, जो स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वराष्ट्र और स्वभाषा की जो बात अगर कोई करता है तो केवल आकाशवाणी ही करती है। आज लाख चैनल हो जाएं, लाख FM हो जाएं, सब हो जाएं और TV आ जाए, बाकी आ जाए, न्यूज चैनल भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मूल जो भाव अगर देखेंगे तो वो देश प्रेम का, तो वो आकाशवाणी के ही साथ है। इसीलिए बहुजन हिताश का वो स्लोगन है, वो इस पर चरितार्थ होता है आज भी।
0: राम सुधार जी, आपकी टिप्पणी आमंत्रित है।
3: जी, वर्तमान समय में बच्चों की पत्रिकाएं करीब करीब बंद हो गई हैं। कुछ एक पत्रिकाएं आ रही हैं, वो पत्रिकाएं बच्चों के अंदर संस्कार, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव पैदा करती थी, उनके भीतर साहित्य की बारीकियां पैदा करती थी, वो अब खत्म है। तो ऐसे में मैं यह कहना चाहूंगा आज के इस पर चर्चा के माध्यम से, आकाशवाणी वाराणसी के माध्यम से, कि बच्चों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी बनाए और सरकार प्राथमिक विश्वविद्यालयों में एक निश्चित समय रख के कि बच्चों को रेडियो सुनाने के लिए दिया जाए, जिससे कि वो संस्कार सीखेंगे, जिससे कि वो भाषा का मानक रूप सीखेंगे। जितने प्राथमिक विद्यालय हैं सरकार के, उसमें एक निश्चित समय रहे, हसम में रेडियो रहे और वह रेडियो बच्चों को सुनाई जाए, तो शायद बच्चों तक सीधे जो हम कहना चाहते हैं वो पहुँच सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे परिचर्चा, आकाशवाणी के 90 वर्ष, हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान। हमारे साथ नरेंद्र आचार्य, दूरदर्शन के साथ लंबे सफर गुजारने वाले पूर्व केंद्र निदेशक वाराणसी रहे, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी जो वाराणसी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वह भी हमारे साथ रहे, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र जी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी उपस्थिति रही। इसी उम्मीद के साथ कि आकाशवाणी की यह सच्ची, संवेदनशील और सुरीली आवाज आने वाले समय में भी यूं ही गूंजती रहेगी, मुझे यानी आपके अपने प्रस्तोता निरंजन सहाय को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष हिंदी रेडियो पत्रकारिता के विकास में आकाशवाणी का योगदान, अभी आपने ये परिचर्चा सुनी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए गायन, कलाकार हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां, राग है हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शरीफ अहमद खान और सारंगी पर लियाकत अली खान।

ಬಬ ನಿ ಸ ರೇ ನಿ ರೇ ಗರೆ ಪರೆ ನಿ ರೇ ಸ ರೇ ನಿ ರೇ.

अभी आपने उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का गाया राग हंस ध्वनि सुना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शरीफ अहमद खान और सारंगी पर लियाकत अली खान। आइए आप सुनिए इन्हीं का गाया राग मिस्टर पहाड़ी में ये दादरा। एक बार फिर आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शरीफ अहमद खान और सारंगी पर लियाकत अली खान।

अभी आपने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग मिश्र पहाड़ी में ये दादरा सुना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शरीफ अहमद खान और सारंगी पर लियाकत अली खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच।

0: क्षेत्र है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्ज़ो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries.